दोस्तों वाकई में ही ऊपर वाले का तो जवाब ही नहीं है। और हम उस बात के लिए ईश्वर का शुक्र नहीं करते जो हमारे पास होती है। हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ ही जाता है। दोस्तों बीते पल कभी वापस नहीं आते, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, खिलते और महकते फूलों की तरह अगर हम रह लें तो कितना अच्छा हो।

नमस्कार, यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। प्रस्तुति रहेगी मुक्ता की।

श्री रामचरित मानस गान होगा 6:44 से 6:55 तक। उसके पश्चात संस्कृत में समाचार होंगे। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में।

7:10 से आप सुनेंगे योग पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज का आसन सेतुबंध आसन, एक विशेष कार्यक्रम होगा।

8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे। आठ बजकर 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल लगी, प्रस्तुति रहेगी मुक्ता की, और 9 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में। ये थी सुबह के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले

0: 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री हनुमान की भक्ति केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने की मानसिक शक्ति भी प्रदान करती है। आपको तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो आइए मंगल की प्रभात मंगल की मुक्ता के साथ प्रथम अर्पण करें श्री हनुमान को। सुबह की 6:11 और ठीक 58 सेकंड हुए हैं। सुप्रभात।

भगवान शिव की कृपा एक परम गुरु के रूप में हमारे सामने युगों से चली आ रही है। अपने सभी विकारों पर नियंत्रण करके वर्तमान से संघर्ष करते हुए जीवन की यात्रा को सफल बनाने की कला शिव भक्ति से आती है। संन्यास हो या गृहस्थ, एक भक्त का ध्येय केवल यही होता है कि जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाए और शिव परम दर्शन को प्राप्त करे।

0: संत कहते हैं कि हे मानव, हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर ही है। अर्पण कर प्रभु के चरणों में और फिर स्वयं को प्राप्त कर जा। जी हाँ, भक्ति के कुछ ऐसे विचार संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। 6:28 और ठीक 5 सेकंड हुए हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, सुनते रहिए अर्पण।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। इसके पहले चरण में सम्मान है और आखिरी चरण में पूर्ण समर्पण। जिसने प्रेम की इस दिव्यता को जाना है वो ही कर पाया है अर्पण, और ऐसा भक्ति बनता है।

तू पूरन है, तेरा सारा इंतजाम भी पूरन है। तेरे हर विधान में दाता, तेरी दया का दर्शन है।

सर्वस्व के भले की कामना करते रहें, अपना भला स्वयं होता रहेगा। 6:44 और ठीक 20 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूच रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्व

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat

7:10 और ठीक 56 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला आज का आसन सेतु बंधासन।

हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन का लाभ उठाने के लिए इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना और

पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन। 7:17 और ठीक 4 सेकंड हुए हैं।

उठो धरा की अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। जी हाँ, ये है गोल्ड सुप्रभात मंगल की मुक्ता के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह उठते ही घर की खिड़की खोलें या दरवाजा, नजर जाती है बाहर की तरफ कि मौसम कैसा है आज जी। वो अनिश्चितता जो है वो तो हम दूर कर सकते हैं मौसम विभाग की मदद से, जब पूर्वानुमान आता है तो। बाकी अनिश्चितताएं समय के साथ दूर होती हैं, और पूरे दिन के पिटारे में क्या होता है ये तो धीरे धीरे ही पता चलता है दिन ढलने के साथ साथ। फिलहाल आज की सुबह सूर्य उदय हुआ था 5:24 पर और सूर्यास्त का समय है 7:22 का। आज का अधिकतम तापमान तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आमतौर पर धूप ही दिखाई जा रही है और बृहस्पतिवार को यानी कल के बाद अगले दिन बारिश की उम्मीद है और उसके बाद फिर 40 पार जाएगा तापमान। ये मौसम तो बदलता रहेगा, करवट भी बदलेगा, बाहर आएगी भी और जाएगी भी, लेकिन ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे दिल की नजर से देखना बहुत जरूरी है जनाब। और इसी बात को हमने तो आपको कह दिया, अब आशा जी कितने सुरीले अंदाज में कहती हैं ये आप भी सुनिए।

जी हाँ, आती जाती बहारों के बीच में अपने मन की बहार को पूरी तरह से खुशनुमा बना करके रखिए। इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल मुक्ताप से लेगी इजाजत और अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे।
0: पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है।
1: वरना ये दुनिया जीन नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
2: नमस्कार मनोज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। हैप्पी ट्यूसडे फ्रेंड्स, गेट योर कप ऑफ टी और कॉफी एंड सेटल डाउन एज वी किक स्टार्ट द प्रोग्राम विद सम न्यूज हेडलाइंस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सेवा से प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
3: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
2: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The second civil investiture ceremony of 2026, today the President will confer 65 Padma Awards. A report.
4: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mamooti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President. Today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
2: On this occasion, we are broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashvani.
5: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है।
6: So finally, idea for human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
7: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित बच्चे हैं या सिख बच्चे हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
8: डिजाइन मेनी इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स, एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक

0: resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
1: BHU में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से PhD तक की पढ़ाई में थी, BHU से की और बराबर स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई।
2: 10-12 वर्षापासून मी तर शिकायला लागलो, पण आता मला इकडे व्यवसाय नाही।
3: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
4: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me, you should become a doctor or do some research in this field.

0: Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees. The programs will be broadcast today on 100.1 Akashwani Go from 9:10 a.m. onwards. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
1: लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अलीगंज में इस इमारत को सील कर दिया है, परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। फॉरेंसिक यूनिट और फायर ब्रिगेड की टीम यहां से जांच के लिए सबूत एकत्र करेगी। इस घटना के बाद संबंधित इमारत को लेकर विकास प्राधिकरण की पहले की कार्रवाई और पुराने रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2016 में अनाधिकृत निर्माण को लेकर इस इमारत को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
0: Union Cooperation Minister Amit Shah will launch the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, NAFED, auction portal in New Delhi today. The launch of the portal is an important step towards strengthening transparency, efficiency and ease of operations in the auction process. The portal is expected to provide a digital platform for streamlining auction-related activities, enhancing the overall functioning of NAFED in the interest of farmers, member institutions and stakeholders.
1: यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मूज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक ये आंकड़ा 168 लाख टन था। मंत्रालय के अनुसार आयातित उर्वरकों की खेप से देश में मौजूद उर्वरक भंडार अधिक समृद्ध होगा तथा किसानों की कृषि आवश्यकताएं पूरी होंगी।
0: Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. External Affairs Minister Dr. Jaishankar has expressed grief over the loss of lives and injuries, including those of Indian nationals.
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। गैर वरीयता प्राप्त सानीत दयानंद जापान के युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमणियम राउंड ऑफ 32 में एक क्वालिफायर खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन लीग के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के वेरावन, एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।
0: In the opening match of the London round of the FIH Pro League, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since the Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. In the FIFA World Cup, France defeated Iraq 3-0 in a group one match at Philadelphia Stadium early morning to secure their passage to the knockout stages. Earlier, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32.
1: और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस अधिनियम 2011 के अंतर्गत लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ होगा।
0: Going to Chennai now. Traffic police registered 2,825 cases during a special enforcement drive conducted across the city between June 19 and 21 to curb traffic violations, improve road safety. The three-day operation was carried out to ensure safe and accident-free movement of vehicles. A total of 355 traffic police personnel were deployed with 122 vehicle checkpoints established at strategic locations. Bengaluru News now. A Karnataka delegation led by former Minister and MLC N.S. Bose Raju met Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Irrigation Minister Nimmala Rama Naidu to invite them to the June 25 celebration marking the successful replacement of all 33 gates of Tungabhadra Dam. Hyderabad News now. Telangana Academy for Skill and Knowledge and Society for Elimination of Rural Poverty have signed a Memorandum of Understanding to enhance skills, digital literacy and financial awareness among self-help group women across the state. Officials said the agreement aims to strengthen women economically and socially. Under the MOU, women will receive training in banking correspondent services, digital and financial literacy, business management, entrepreneurship and sustainable livelihoods. And Manoj, over to you now for rest
1: of Maharashtra, Mumbai ki khabar. Maharashtra Sarkar ne Somvar ko मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में 97,706 करोड़ 40 लाख रुपए की पूरक मांगें पेश की। इनमें सबसे अधिक 20,552 करोड़ रुपए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद केंद्र की राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए 10,007 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावों में विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 7,367 करोड़ 32 लाख रुपए और सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना और कार्यान्वयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ स्वपन दास गुप्ता ने कल विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार ये बजट समावेशी है और इसका उद्देश्य विकसित भारत के हिस्से के रूप में विकसित बांग्ला का निर्माण करना है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले बजट में सामाजिक सुधार, महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा, कृषि उद्योग विकास से लेकर अवसंरचना उन्नयन, पर्यटन पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि की है। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान बनाए रखा जाएगा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नारी सहायता डेस्क और गश्त के लिए दुर्गा सुरक्षा दल स्थापित किए जाएंगे। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता।

0: लगातार के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आज बारिश के साथ तूफान आने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
1: यस मनोज, चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 डिग्रीज मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्रीज वाइल द मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई अगेन विद द possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 26 degrees to 39 degrees Celsius. And Manoj.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना।
1: Yes, on this day, that is June 23rd, the world comes together to observe United Nations Public Service Day. This annual event, of course, honors the dedication of public servants around the globe, and it serves as a reminder of the hard work, the toil that happens behind the scenes in our local and national governments. This is rooted in the values of transparency, inclusion, and accountable governance. The Public Service Forum is the United Nations flagship global platform dedicated to strengthening the capacity of public institutions and promoting effective, responsive, and of course people-centered service delivery. And you know, this year the government of Georgia is proud to host the Public Service Forum 2026 under the theme Transforming Public Institutions, Advancing Innovations, Accountability, Participation and Inclusion.
0: 23 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। 1953 में आज ही के दिन जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में कैद के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 1980 में आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई।
1: And you know, in the year 630, that is really going way back, world's oldest parliament, the Icelandic parliament, was established. And 1894, International Olympic Day was established in 1948 by the International Olympic Committee to commemorate its founding in Paris on this date in 1894. This is interesting, in the year 1868, William Latham Scholes patents his invention with a QWERTY keyboard called it, and then of course he called it the typewriter. And also in 1860, the United States office establishes the first government printing office. And 1930, the Salmon Commission recommends a federal India and the separation of Burma. This took place in London. And in 1969, IBM announced its decision to price its software and services separately from hardware, thus creating the modern software industry.
0: 1995 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव पारित किया। 2008 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्रो चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। 2008 में आज ही के दिन टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोनल और उसकी सहायक कंपनियों सहित 270 करोड़ डॉलर का अधिग्रहण किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: Birth anniversary of famous British computer scientist, mathematician, Alan Turing. He made major contributions to mathematics, cryptanalysis, logic, philosophy and biology, and to the new areas later named computer science, cognitive science, artificial intelligence and artificial life. Turing was born this day in 1912.
0: आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की।

0: वे सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे, जिन्हें हिंदी फिल्मों के मशहूर गाने जैसे रेलगाड़ी फिल्म आशीर्वाद के लिए याद किया जाता है। आपकी मुख्य फिल्में साहेब बीबी और गुलाम, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, सत्यजीत राय की सोनार किला आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा गीत रेलगाड़ी।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी।

आज जयंती है रहमान की। उनका जन्म 23 जून 1921 को हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिनका करियर 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक रहा। वे गुरुदत्त की टीम का अभिन्न हिस्सा थे और उन्हें प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, दिल ने फिर याद किया, छोटी बहन और वक्त जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया छोटी बहन फिल्म का ये गीत।

आज जन्मदिन है डॉक्टर जब्बार पटेल का। उनका जन्म 23 जून 1942 को पंढरपुर में हुआ है। वे भारत के एक मराठी भाषा के थिएटर और फिल्म निर्देशक हैं। 1973 में उनके द्वारा निर्देशित विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक क्लासिक माना जाता है। वे मराठी सिनेमा में क्लासिक फिल्मों के निर्माता हैं, जैसे समना, जैत रे जैत, उम्बरथा, सिंहासन। उनकी कुछ अन्य फिल्मों में मुक्ता, एक होता विदूषक और मुसाफिर शामिल हैं। उनकी सबसे प्रशंसित फिल्म है 1999 की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने अपनी मराठी फिल्म मुक्ता के लिए 1995 में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जैत रे जैत का ये गीत।

आज जन्मदिन है राज बब्बर का। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के छात्र रहे हैं। नई दिल्ली में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद वे बॉम्बे चले गए और 1970 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक रोल से उन्हें काफी चर्चा मिली। इसके बाद वे बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का अहम हिस्सा बन गए। दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ निकाह और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज में नजर आए। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी सफलता हासिल की। आपकी मुख्य फिल्म में आप तो ऐसे ना थे, अगर तुम ना होते, इंसानियत के दुश्मन, आंखें आदि हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ गीतों और उनके संवाद पर।

कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का। गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है।

0: स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
0: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश,

0: छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमरीका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।

0: draws. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 days. IMD said that heavy rainfall conditions are also expected over Bihar, Arunachal Pradesh, coastal Karnataka, Madhya Maharashtra, Goa, Odisha, Telangana, Kerala and northeastern parts of the country today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sunil. The blaze in a building in Lucknow and the death of Indians in Qatar LNG hub blast are the top stories in most dailies today. Keir Starmer resigning from the Prime Ministership of the United Kingdom appears on the front page of newspapers. Under pressure, Starmer quits as PM. Sixth Brexit in UK in 10 years, headlines the Times of India. Fresh power shift in UK as Starmer quits, writes Hindustan Times. US-Iran forged six-day roadmap to final deal, reads the headline in the Tribune. The US has temporarily lifted curbs on Iranian oil sales and dollar-denominated payments, writes the paper. The Indian Cybercrime Coordination Centre of the Ministry of Home Affairs has sounded alarm over a new cyber fraud known as boss scam or CEO impersonation fraud, reports the Pioneer. An engineer from Rajasthan used artificial intelligence to hack into the Rajasthan Public Service Commission portal and delete his competition for a government job, writes an Indian Express, highlighting the misuse of AI platforms. And finally, to enhance ease of commuting and strengthen availability of amenities, the NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज आब नए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति

0: समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोग और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
0: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
0: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनअत, अदविया, अदबो तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश

0: हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाकये की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूरे दाखिला और इमदादे बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदादे बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमुई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमुई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी

0: अक्षय सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉ अजय शंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम व सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

बिंदास मुस्कुराइए, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इसीलिए जनाब करते रहिए म्यूजिकल दिल लगी मुक्ता के साथ। 8:46 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल पर हैं आप।

0: सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी मुक्ता के साथ।
1: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जनाब सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने की तैयारी है, अपने काम पर जाने की तैयारी है, दौड़ भाग है, लेकिन क्या कभी आपके साथ ये हुआ है कि सुबह उठते ही आपको ऐसा लगा हो कि आज मूड जरा ऑफ सा है, बिन बात के चिड़चिड़ाहट है, काम में मन नहीं लग रहा है, और फिर कारण खोजने की कोशिश की हो तो ऐसा लगा हो रूटीन लाइफ है, बॉस की डांट खानी पड़ेगी, या ट्रैफिक में फिर फंसना पड़ेगा, या फिर इस मौसम की वजह से चिड़चिड़ाहट है। लेकिन क्या कभी आपने अपने पेट से पूछा है, ये भी कारण हो सकता है आपके मूड ऑफ होने का। जी हाँ, क्योंकि आजकल गट हेल्थ भी है बहुत ट्रेंड में। गट सीधे शब्दों में हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां हमारा खाना पचता है, हमारी न्यूट्रिशंस जो है वो बॉडी में यूज किए जाते हैं। आपको मालूम है हमारा 70% इम्यून सिस्टम हमारे पेट में ही है, जहां तकरीबन 38 खरब के करीब गट माइक्रोबायोम है। अभी जो माइक्रोबायोम है इसमें गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड भी। अब जब गुड बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे तो गट हेल्थ टिप टॉप होगी। यही गट हेल्थ बहुत हद तक हमारे गुड मूड का कारण भी बनती है, क्योंकि अगर ये खराब है तो फिर चिड़चिड़ाहट होनी जायज है। अब अगर आप इस चिड़चिड़ेपन से अपने आप को दूर करना चाहते हैं तो उसमें एक वजह आपको मिल गई गट हेल्थ की। अगर ये वजह है और आपको अपनी हेल्थ करनी है अच्छी, तो फिर आपको दही और छाछ से करनी होगी दोस्ती। फाइबर युक्त खाने को कहना होगा यस, और जंक फूड को कहना होगा नो। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि स्ट्रेस लेने से भी पेट के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो फिर स्ट्रेस नहीं लेनी है, केवल और केवल मुस्कुराना है, खुश रहना है हर पल हर लम्हा, और करते रहना है म्यूजिक के साथ दिल लगी।

कुछ तुम जल। जी हाँ जनाब, खुशियाँ बांटते रहिए दोगुनी हो जाएंगी, और दुख बांटेंगे तो वो आधा होगा। ऐसा साथ बना करके रखिए अपने पास हमेशा। फिलहाल अब समय हो चला है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक निजी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा

0: पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थानों के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good. Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, "World leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda." Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said, "Initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building." Mr. Modi said, nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large neo-middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, neo-middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. President will confer the 65th Padma Awards today. Uttar Pradesh government has suspended 4 state government officials in connection with Lucknow fire incident, which claimed the lives of 15 students. State police has registered a case against 6 individuals and arrested 4 accused persons last night. The state government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident, and its members will submit their report within 7 days. 4 cargo ships carrying shipments of urea, diammonium, phosphate and

नमस्कार, सुप्रभात। और वक्त तो चला है 9:40 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हां, आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। जी हां, उम्मीद है आपकी शानदार सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कुछ लोगों ने चाय पी ली है और कुछ पीने का इंतजार कर रहे हैं। और अगले इस पूरे 3 घंटे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं रहने वाली हूं आपके साथ। हर एक पल को हम साझा करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। म्यूजिकल दिल लगी, आइए किशोरदा की आवाज में ये गीत आपके लिए।

0: जी वाकई जिंदगी का सफर कोई नहीं जानता कि आपको उस सफर में खुशियां मिलेंगी, गम मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, लेकिन ये सब मिलना जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों से आपको अनुभव मिलता है। आपको जिंदगी के सफर में मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जो अनुभव मिलते हैं, इसी का नाम जिंदगी है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एफएम गोल्ड, खरा सोना।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड और म्यूजिकल दिल लगी में मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसका प्यार और अपनापन है, और जब दिल किसी का हो जाए तो जिंदगी भी उसी की हो जाती है।

जी, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सुबह जिंदगी का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड

के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will help Indian farmers, fishermen, artisans and small businesses to prosper globally and accelerate job creation. Writing an article for an English daily, the minister said that the agreement, which will come into force on the 15th of July this year, will provide comprehensive market access for Indian goods in the United Kingdom across a wide range of sectors. He said that it will immediately eliminate tariffs on about 99% of tariff lines, creating enormous opportunities for Indian exports. Uttar Pradesh government has taken action against four state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against six individuals and arrested four accused persons last night. Four officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. At least 15 people, mostly students aged 16 to 25, died in the tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purnia area of Aliganj, triggering panic amongst students. Nine students were injured and have been admitted to King George's Medical University, Lucknow. Most of the deaths were caused by suffocation. Iran has denied Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country after the first round of negotiations in Switzerland. And Indian equity markets open on a flat note today after a multi-session rally driven by easing tensions in West Asia. Sensex opened at 77.086, down 8 points, while Nifty started the session at 24,071, lower by 32 points. That is the end of the...
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया कि अमरीका अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने देने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई

0: छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन का है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक यह आंकड़ा 168 लाख टन था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दोहा में भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार की रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा में भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए थे। ईरान ने स्विट्जरलैंड में अमरीका के साथ वार्ता के पहले दौर के बाद अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को हथियारों के निरीक्षण की अनुमति देगा। श्री जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान बातचीत के बाद परमाणु निरीक्षकों को आने देने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। श्री वेंस ने यह भी कहा कि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से शीघ्र बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच कल बातचीत में अमरीकी वित्त विभाग ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से 60 दिन की छूट दी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी तथा ईरानी कच्चे तेल का उत्पादन अमरीकी डॉलर में बिक्री और आपूर्ति स्वीकृत हो जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत लग्जमबर्ग साझेदारी लगातार और मजबूत होती रहेगी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में

0: आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। कतर ने रास लफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान ने अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे का खंडन किया। ईरान अब परमाणु निरीक्षकों को फिर आने की अनुमति देगा। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good morning. This is Akashwani. I'm Sunil Verma with the world's news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. Iran denies US Vice President J.D. Vance's claim that Tehran will allow nuclear inspectors back into the country. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है फटाफट दौड़े दौड़े आए वो, और उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिन आई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम वनाम मिले हुए है पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, क्या कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत
1: ये
2: तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे, जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है
1: जी।
2: तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।

0: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और देशों में भी गए हैं, तो वहां से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहां?
1: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहां से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहां पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है वो केरा तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया, और राजस्थान के हैं और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहां पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन किया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहां बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
0: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
1: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
0: जी,
1: तो वहां पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
0: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है हस्तशिल्पियों को, इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
0: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
1: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
0: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
1: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे दो बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
0: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
1: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
0: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग भी
1: बताए? हाँ, हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई भी हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का तो हम बता सकते हैं।
0: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम, लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
1: हाँ, कम से कम एक साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 23 साल में कारीगर बन जाएगा वो, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसमें मास्टर प्राप्त में उनके पद पर जो है वो चुने, हमें चुने या किसी को चुने, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट में उनके पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था, डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पर, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा।
0: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं पता?
1: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरजकुंड मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
0: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
1: हाँ, 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने के बाद इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई जाती है।
0: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर जा सकता है
1: जी, तो अपना रोजगार जो है खुद चला सकता
0: और फेमस भी हो सकता, फेम भी पा सकता
1: जी। मुझे एक साहब मिल गए थे वहीं उड़ीसा प्रोग्राम में, तो आए, उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीव लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, तो बहुत खुश हुए वो।
0: ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा है खास तौर से, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए?
1: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में। तो जब रुचि होगी जब तो काम कर पाएगा, रुचि है उस

0: कंप्यूटर काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी ये महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से, ही ये जिंदा रहे।
0: ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, हाँ दो दो मतलब वो रखने चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो।
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया
0: हाँ
1: जाए उसको।
0: जी, जहाँ जहाँ इसके उद्योग हैं,
1: जी,
0: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का काम वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है, जो कि वहां से हमें काम सिखाया उन्होंने लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा, और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है। अच्छा, हम बराबर काम कर रहे हैं। बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में, जब दंगा फिसाद हुए थे तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
0: ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाना, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाना। तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले, हाँ बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहा, मतलब हिम्मत नहीं आ रही हम, हाँ काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और अब कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स, जी हाँ, जहां आपके दिल की बातें आप हम तक पहुंचाते हैं, आपकी फरमाइशें आप हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कैसे पहुंचाएंगे फरमाइशों के लिए, जल्दी से नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com, नोट कर लीजिए और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और

0: प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम में हमारे पास में आपके दिल के मेल, आपकी फरमाइशें आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढींगिया जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है। भारत भूषण जी, मल्होत्रा TD मोहाली जी, साथ ही दिग्दर्शन गौर जी, संदीप जी, अनिल मोहन जी, बिट्टू जी और निसार अली जी कहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में ये गीत सुनना चाहते हैं।
2: चांद के पीछे भाग रहा हूँ मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
3: क्या
2: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
3: सपनों में देखा होगा
2: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूँ।

जी हाँ, दिल का मेल बॉक्स। और ये देखिए, राजस्थान से श्री गंगानगर से हमें मेहर अरोड़ा, ममता जी, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका हमें मेल प्राप्त हुआ है और लिखते हैं कि कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। मेल प्राप्त हुआ है आर कुमार जी का पंजाब से। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा सब परिवार ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं। दिलवार खान जी, हसीना बानो,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। फरमाइशें लगातार हमें मिल रही हैं और हरिद्वार से हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां ने मेल भेजा है और लिखते हैं कि नमस्कार दीदी जी, नमस्कार, कह रहे हैं कि कोई भी गीत हमें आप सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। निसार अली जी हमें लिखते हैं, नमस्कार आरजे जी, कोई भी गीत में हमें शामिल करें बिल्कुल। और सुनील खेरा जी सुनना चाहते हैं, नाम गुम जाएगा चेहरा, ये बहुत ही सुंदर फरमाइश, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत। हरजिंदर शिंदा जी लिखते हैं हमें, पंजाब से सब परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और जसवीर जस्सी जी, इनका गांव है नधाना, पंजाब से ये हमारे साथ जुड़े हैं। महेश अग्रवाल जी फिल्म बाजार से सुनना चाहते हैं और सब परिवार, ये भी बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, कोशिश है और ये गीत आपके लिए, आपकी फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
2: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
3: मैं गांवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े
2: जी।
3: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
2: जी,
3: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है, संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी
2: जी। आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
3: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है
2: जी।
3: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है, वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके

0: बच्चों के बारे में सोचते हैं
1: जी
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो
1: जी,
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ उनकी नजदीकियां ना

0: पड़े
1: जी,
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है। मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में हैं, जो मैं काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, हमें तो अब फॉलो करना चाहिए, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ICYC एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है, तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है, हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं, और रिजल्ट है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है, तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहां हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है, बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके, ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा, उस टाइम के सिचुएशन को नहीं, आगे क्या होगा, तो हम ऐसी जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली। आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडंडी के साथ जुड़ा था, तो दो ट्रक्स में नागडंडी से सामान आया, 300 GI शीट्स पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए, लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें, तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे, लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग, उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी।
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से, वैसे मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज, तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी।
0: तो अभी आपको मैं बताऊं, और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में, चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियन मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरी पोरा में देखो, अकिनगाम में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठ अष्टमी के ऐसे हवन होते हैं, तो पीस प्रोसेस हो गई। और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है, तो ये चलते आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसका हर साल ये असर होता है।
1: अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है, और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा, यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा। कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है। आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए, या जिस तरह से भी। आज आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली, तरक्की, अमन

0: के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है।
1: देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी आपने विद रेफरेंस टू रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे। तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:15 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी। ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था। यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनमें भी यही संस्कार थे, और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे। जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह, और शेरबाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
0: जी।
1: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे निकलते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भाई रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे। मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा, मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था। अगर मैं बोलूंगा वो हो गया ये हो गया तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ, हमको आगे चलना है। हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो है एक साथ हैं, और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनेटरी बेन्स के लिए, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है। आई हैव इंस्टेंसेस मोस्ट ऑफ देम, एक कोपाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेज भी सर्विस कर रही थी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कोपाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो वहां काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर्स, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
0: जी,
1: कश्मीरी पंडित क्या था,
0: असली खूबसूरती वही
1: थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
0: जी,
1: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखिए रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विथ माई चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं, मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन, कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
0: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था।
1: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
0: जी,
1: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे, लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर
0: जी। यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
1: correct.
0: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर That's रखनी true. है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
1: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर, ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
0: जी
1: जब एक यूनिसन में आएगा, कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड
0: जी।
1: और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना
0: जी। तो भट्ट साहब यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं अंशु अग्रवाल को। तो अब वक्त है आज के भारत भ्रमण का। तो आज भारत भ्रमण पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ों की रानी, जी हाँ, यानी ऊटी की तस्वीर। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित ऊटी तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और बेहद खूबसूरत है, सच मानिए। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बगानों, बादलों से ढकी पहाड़ियों और सुखद मौसम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मौसम और ये शहर दोनों बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे में हम इस शहर की टॉय ट्रेन की खूबसूरत यात्रा को नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, तो आप भी इस यात्रा की पेटी को बांधिए और सबसे पहले हम सुनेंगे इन सुंदर पहाड़ियों के लिए ये सुंदर गीत।

जी हाँ, तो आज हम जिस पहाड़ियों के बीच में जिन सफर पे निकले हैं, वो सफर है, वो तस्वीर है ऊटी की। ऊटी के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऊटी का इतिहास नीलगिरी पर्वतमाला में रहने वाली तोडा जनजाति से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले यह क्षेत्र टोडा समुदाय का निवास स्थान हुआ करता था। साथ ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की खोज की और ऐसा कहा जाता है कि सन 1824 में एक शख्स जिनका नाम था जॉन सुलिवन आए और उन्हें यहां का मौसम, यहां का नजारा, यहां की पहाड़ियां इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पसंद आई, और क्यों भी ना आती, ऊटी शहर ही ऐसा है, इतनी पसंद आई कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में इस शहर को विकसित करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, धीरे धीरे ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल बन गया और अंग्रेजों ने यहां पर चर्च, बंगले, सड़कें और बाग बगीचे विकसित करने शुरू कर दिए। अब बात करें यहां की बहुत ही प्रसिद्ध एक पर्वतमाला। आप सोचिए कौन सी पर्वतमाला की मैं बात कर रही हूं। जी हां, नीलगिरी पर्वतमाला, जो ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी का अर्थ है नीले पर्वत। सोचिए, सोचते हुए ही कितना खूबसूरत मंजर ये लगता है ना। और सोचिए जब हमें वहां जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज इस तस्वीर कार्यक्रम में हम वहां कैसे जा सकते हैं, वहां जाकर हम क्या खरीद सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, इन सारी तमाम बातों के बारे में हम लोग यहां जानकारी लेने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जब यहां पर पाए जाने वाले विशेष फूलों से और दूर से दिखने वाली ये नीली आभा के कारण इन पहाड़ियों को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ,

0: जी हाँ दोस्तों, गजब का है ये दिन। और ये दिन गजब का इसलिए है क्योंकि हम निकले हैं नीलगिरी, नीले पहाड़ों की जो वादियां जहां पर स्थित हैं, यानी आज की तस्वीर ऊटी के नाम। हम बात कर रहे हैं ऊटी शहर की। और ये जो गीत आपने सुना, ये गीत आप तक पहुंचाने का मेरा एक मेन मोटिव था। और वो मोटिव ये था कि इस गीत की जो शूटिंग हुई है वो आपके शहर जहां हम बात कर रहे हैं ऊटी में हुई है। जी हाँ, सो ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत घूमने का शहर तो है ही, साथ ही यह बॉलीवुड का एक आउटडोर स्टूडियो भी माना जाता था, जहां हमारी फिल्म के बहुत से मशहूर गीतों की शूटिंग हुई है। आपको बताना अब ये है कि ये जो गीत आपने सुना, इतना तो पता लग गया कि ऊटी में इसकी शूटिंग हुई है, लेकिन ऊटी में किस जगह इस गीत की शूटिंग हुई है ये आप मुझे बताएंगे।
1: मन की बात है जन

0: पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है और आज की तस्वीर में ऊटी। अब बात करेंगे ऊटी के मौसम की। तो दोस्तों, ऊटी का मौसम पूरे साल भर बहुत ही सुहावना रहता है। बात करें मार्च से जून तक तो हल्की गर्मी रहती है, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय समय यही माना जाता है। जुलाई से सितंबर तक थोड़ा मॉनसून रहता है, हरियाली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और झरने और घाटियां अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। अक्टूबर से फरवरी में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन जो शांत वातावरण को पसंद करते हैं उनके लिए यह समय एकदम आदर्श माना जाता है। अब बात आती है कि ऊटी आखिर हम पहुंचे कैसे, कैसे जाएं, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले

आ गया ना दोस्त, ये गीत सुनते ही आपकी आंखों के आगे एक चित्र सामने आया, और वो चित्र है कि एक रेलगाड़ी है, वादियों से घिरी हुई, धुआं आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी हाँ, ये जो सीन था, ये जो वादियां हमने इमेजिन की है, ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा। ये जो गीत है चल चैया चैया, ये गीत ऊटी की उसी जगह पर शूट किया गया है, और बहुत ही सुंदर रेल यात्राओं में से एक यात्रा ये मानी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके लिए इसको यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित एक मान भी दिया गया है। और जैसा कि अब हमने मौसम की बात कर ली है, तो हमारे जहन में बात आती है कि आखिर यहां पहुंचा कैसे जाए। तो हवाई मार्ग की अगर हम बात करें, तो ऊटी से सबसे निकट हवाई अड्डा है कोयम्बटूर। तो आप अगर हवाई से यात्रा अपनी प्लान कर रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर रेल मार्ग की हम बात करें, तो रेल मार्ग यहां पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, जो ऊटी से चलने वाली एक यात्रा है, और आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो बेंगलुरु, मसूर, कोयम्बटूर और चेन्नई से सड़क मार्ग द्वारा बहुत ही आसानी से ऊटी तक पहुंच सकते हैं।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। ट्यून किया है आपने 100.1 MHz। और आज की तस्वीर में हम बात कर रहे हैं ऊटी की। तो ऊटी हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पहुंचने के बाद ऊटी में आप कहां कहां घूमे, बात करेंगे वहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। अब ऊटी जाए और ऊटी की झील पर अगर ना जाए तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो ऊटी की झील अपनी चेकलिस्ट में सबसे पहले आप नोट

के साथ मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं डोडा बेटा पीक पर। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां से आप पूरी घाटी और आसपास के पर्वतों का शानदार दृश्य देख सकते हैं। जी हां, इसके बाद आप बोटैनिकल गार्डन जाना ना भूलें, क्योंकि यह सन 1848 में स्थापित लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां हजारों प्रकार के पौधे और फूल को उगाया जाता है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज गार्डन। जी हां, भारत के सबसे बड़े गुलाब उद्यानों में से एक है ऊटी का रोज गार्डन, जहां पर तरह तरह के हजारों किस्मों के गुलाब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ऊटी जाएं और चाय के बागानों में ना जाएं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊटी की पहचान है इसके विशाल चाय के बागान। जी हां, यहां पर पर्यटक चाय की खेती और निर्माण प्रक्रिया, चाय की पत्ती कैसे बनाई जाती है, इसको भी बहुत करीब से देख सकते हैं। इसके बाद में ऊटी की संस्कृति, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो वहां की वेशभूषा, वहां का पहनावा, वहां का खाना पीना और वहां की संस्कृति को हमारे साथ जरूर हमें सम्मिलित करना चाहिए। ऊटी की संस्कृति की अगर बात करें तो वहां पे तमिल परंपरा और जनजातीय विरासत का एक सुंदर मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की प्रमुख जनजातियां, जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी कि टोडा जनजाति तो वहां है ही, साथ ही कोटा, कुरुम्बा, इरुला, यह सारी जनजाति भी अपनी विशिष्ट वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। साथ ही वहां के स्थानीय भोजन की अगर हम बात करें तो ऊटी में दक्षिण भारतीय भोजन विशेष रूप से लोकप्रिय है। मुख्य व्यंजन की अगर बात करें तो इडली, डोसा, सांबर, उत्पम और साथ ही बहुत ही वहां की प्रसिद्ध है फिल्टर कॉफी। इसके अलावा यहां की घर में बनी चॉकलेट्स और नीलगिरी चाय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ऊटी जाएं तो यह सब चीजों का आप आनंद जरूर उठाएं। तो आज की जो यात्रा थी ऊटी की थी, ऊटी में हमने बहुत कुछ जाना और ऊटी जाकर क्या खरीदना है ये तो हम भूल ही गए। ऊटी में आप खरीद सकते हैं नीलगिरी चाय, घर में बनी चॉकलेट्स, वहां के मसाले बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और साथ ही हस्तशिल्प की वस्तुएं। आज की तस्वीर में ऊटी की जानकारी बस इतनी ही और कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में

0: मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक बार अपना प्रश्न फिर से बता देते हैं कि भाई परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है। हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर जल्दी जल्दी भेज दीजिए। हम आपके जो उत्तर है उन्हें अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना उत्तर हमें कि परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है।
1: और कल्पना, एक और संदेश आ गया है मेरे पास, ये लिख रही है भारती दिल्ली से। वो कह रही है कि परिवार के साथ बिताए गए पलों में सबसे खूबसूरत याद मेरे माँ की जन्मदिन की है। जब मेरी मदर 50 साल की हुई तो हमने सारी तैयारियां चुपके चुपके कर ली और केक मंगवाया। जैसे ही माँ कमरे में आई, हम सब ने मिलकर उन्हें दिया सरप्राइज। सच बताऊं, उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा, अरे वाह, ये पल तो सबसे अनमोल है। और आज भी उस दिन को याद करके हमारा मन खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, और मैं सच बताऊं, आप जब ऐसे SMS ये जो भेज रहे हैं संदेश, इनको पढ़ के तो मेरा भी मन इतना खुश हो रहा है
1: जी, अपनी माँ की याद आ रही है।
0: दूसरे जब इतनी खुशी खुशी लिख रहे हैं, उनके जो वाइब्स हैं वो अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हुए। तो आप सब अपने जो उत्तर हैं वो हमें लिखते रहें, भेजते रहें। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी कि एक शेर है, उससे शुरुआत करना चाहूंगी कि जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी ताकत पर भरोसा रखते हुए दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। 19 जून 2026 से महिलाओं को और बच्चों को बेहतर सुरक्षा देने हेतु पुलिस उपस्थिति द्वारा जल्दी, जिसको कहते हैं ना कई बार देरी हो जाती है जांच प्रक्रिया में, तो त्वरित जांच होगी और इस तरह से जो समाज है उसको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे।
1: और भाई कल्पना, इससे महिलाओं और बच्चों के जो अनुकूल पुलिसिंग सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है और शिकायतकर्ताओं के लिए एक सहयोगात्मक और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। और पुलिस थाने में मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे पीड़ित महिलाएं और बच्चे प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ सहजता, विश्वास और सम्मान के वातावरण में संवाद कर सकेंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी पहल है।

0: और शिकायतकर्ताओं के लिए एक सहयोगात्मक और संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। और पुलिस थाने में मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे पीड़ित महिलाएं और बच्चे प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ सहजता, विश्वास और सम्मान के वातावरण में संवाद कर सकेंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी पहल है, प्रत्येक महिला को समय पर सहायता, सुरक्षा और न्याय जो सुनिश्चित किया जाएगा। तो भाई दिल्ली पुलिस की इस ऐतिहासिक पहल पर तो हमारी तरफ से और सब मुझे लगता है सबकी तरफ से शाबाशियां तो होनी चाहिए।
1: बिल्कुल शाबाशियां भी होनी चाहिए, साथ ही हमें इतना सुकून हो रहा है कि भाई हमें एक ऐसी सुविधा
0: मिल गया है ना, कितना

0: दोस्तों, अभी ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम अपने श्रोताओं के एक बार ईमेल और देख लेते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है।
1: जी बिल्कुल, राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी गांव, चौधरी वसल हिसारगर से ये कह रहे हैं, रश्मि जी और कल्पना जी, एफएम गोल रोजाना सुनता हूं और अपने परिवार में हंसी मजाक के साथ रहते हैं और रेडियो का बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है।
0: बिल्कुल। और एक ईमेल और आया है हमारे पास वैशाली रहेजा जी का, ये लिखती हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर लम्हा खास होता है, लेकिन हमारे मनाली की वो ट्रैवलर ट्रिप सबसे यादगार थी। सासू माँ का साथ, दोनों ननद की मस्ती, बच्चों का हुड़दंग और ऊपर से हमारे मजाकिया जीजू की वो मजेदार कॉमेडी, सबने मिलकर पूरे रास्ते फुल एंजॉय किया।
1: अच्छा,
0: रास्ते भर हंसी मजाक और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मजा और सुकून सिर्फ अपनी हंसती खेलती फैमिली के साथ में ही है। और एक बात और दोस्तों कहना चाहूंगी कि भाई कई बार लोग बोलते भाई मैं ससुराल वालों के साथ घूमने में मजा नहीं आता, वैशाली जी आपने ये बात लिख के सच में बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ा है। हमें भी ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत मजा आता है, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है
1: और परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और वो कह रहे हैं कि हम लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और अनमोल बातें, और साथ में कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, कह रहे हैं कि परिवार वो सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर हर कोई शांति महसूस करता है। बढ़िया संदेश।
0: और नवीन भाटिया जी भी लिखते हैं कि परिवार के साथ सबसे सुंदर पल हमने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हैं स्कूल के दिनों में। उन दिनों में हमारी सारी चॉइस जो है वो पूरी हो जाया करती थी। माता पिता तो करते ही हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी। ऐसा ही एक और ईमेल हमारे पास आया है राधा शुक्ला का, वो लिखती है सबसे खूबसूरत पल गर्मियों की छुट्टियां होती थी बचपन में, जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो वो मस्ती, वो खुशियां बहुत याद आती हैं।
1: वाह,
0: तो ऐसे ही हमारे दोस्त और हमारे साथ जुड़े रहें। उनका प्रश्न है परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल, तो हमें आप ईमेल भेजते रहें। हमारा ईमेल आईडी है
1: भाई, खुश रहना भी तो एक ईमेल है ना, और खुश रहना भी तो एक हुनर है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों देखिए, हम ऐसी बातें तो करते रहेंगे, साथ ही आपके लिए बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास होती हैं। एक और जानकारी है, एक प्रेरणादायक कहानी है बल्कि, कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया अपने हुनर के बल पर।
1: अच्छा,
0: एक लड़की, एक लोक कला और उसे बचाने का सपना, ये कहानी है एपन गर्ल के नाम से मशहूर मीनाक्षी खाती की।
1: अरे वाह, तो भाई एपन गर्ल मीनाक्षी खाती की ये बात बता रहे हैं हम लोग। भाई 6 साल की उम्र से जब मीनाक्षी ने पहली बार एपन बनाया तो उनकी दादी ने उन्हें गले लगा लिया। भाई एपन हम बता दें आपको, ये पहाड़ में जब एक तरह की रंगोली होती है, इसे जो है वो चावल को भिगो दिया जाता है और पीस लिया जाता है, और गेरू को भी भिगोकर तैयार कर लिया जाता है, उससे ये रंगोली बनती है, उसको एपन कहा जाता है। तो मीनाक्षी खाती ऐसा एपन बनाती है। तो फिर उनकी दादी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि भाई एक दिन तू इस कला से बहुत नाम कमाएगी। और वही हुआ भी दोस्तों, एपन जो है ये हमने जैसे बताया कि बहुत पुरानी ये लोक कला है और शुभ मौकों पर दीवारों और जमीन पर बनाई जाती है। तो इसका जो डिजाइन होता है ना, वो संस्कृति और आस्था की कहानी कहती है दोस्तों।
0: बिल्कुल। और जब ये खूबसूरत कला लोगों के घरों से गायब होने लगी, नई पीढ़ी से दूर होने लगी, तभी मीनाक्षी ने ठाना कि भाई अपन को खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने लोक कला को नए दौर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट, जहां एपन को कपड़ों, होम डेकोर, ज्वेलरी और आधुनिक डिजाइनों में उतारा गया, और फिर से ये कला जीवित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत एपन बनाती है मीनाक्षी जी, मैंने भी इनके बहुत सारे एपन देखे हैं कल्पना। और आज मीनाक्षी हजारों ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को एपन कला सिखा चुकी हैं,
0: सिखा भी रही है, और साथ ही अपने काम में मगन मीनाक्षी ने कभी ये नहीं सोचा जो हुआ उनके जीवन में आया, वो पल जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली बेटी को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को दिखाने का मौका मिला।
1: वाह, मीनाक्षी खाती ने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी जड़ों को संभाल कर रखा जाए तो भाई गांव की मिट्टी से निकली कला भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है ना कल्पना।
0: बिल्कुल।

0: और कल्पना, परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है, ये हमारा सवाल था। और जो सवाल का जो जवाब आया है बड़ा एक दिल को छू लेने वाला ईमेल मुझे मिला है, आपको हो तो पढ़ दूं?
1: जी बिल्कुल।
0: नाम है मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये मेल हमें मिला है। वो याद कर रहे हैं अपनी माँ को और कह रहे हैं कि जब वो हैदराबाद से नौकरी करने के बाद घर आकर पहली बार माँ के गले मिले तो उनकी आंख में आंसू आ गए और खुशी इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। लेकिन जब दूसरी बार वो माँ से मिले तो माँ बहुत बीमार थी और 5 दिन के बाद उनकी माँ नहीं रही। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी भावपूर्ण कविता

लिखकर भेजी है और जिसमें वो लिखते हैं, माँ तेरी यादें, तेरी बातें अब याद आ रही हैं, माँ तेरी बातें अब याद आ रही हैं। और कहती हैं कि कहते हैं कि खेल खेल में जब बच्चों से झगड़ा हो जाता था तो मेरी माँ पास आकर मुझे दो चार थप्पड़ लगा जाती थी और प्यार भी करती थी। और गर्मियों की छुट्टियों में के पास जब मैं रोजाना खेत में जाया करता था तो अपनी माँ के साथ बैठकर खेतों में काम करवाता था। रात में जब लैंप जलाकर स्कूल का काम पूरा करता था, माँ तेरी वो सारी बातें अब याद आ रही हैं। और कहते हैं कि एक साल बाद वो नहीं रही और उनको गले में बीमारी हो गई।

0: से बहुत सारा प्यार करें, अपने बड़ों का सम्मान करें।
1: बिल्कुल, और देखिए यादों की यही तो खूबसूरती होती है कि यादें हमसे कभी जुदा नहीं होती। इंसान भले हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमसे कभी जुदा नहीं होती। और एक और हमारे दोस्त हैं आशीष गिरी जी, वो लिखते हैं कि परिवार के साथ जब भी टाइम मिलता है खूब इंजॉय करता हूँ, खासकर अपने बेटे के साथ। गर्मी की पूरी छुट्टियां परिवार के साथ और अपने बच्चे के साथ बिताई हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास ईमेल आया है, उग्रसेन यादव जी लिखते हैं, आप दोनों को नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर आपकी अच्छी अच्छी बातें। कैसे आप दोनों समस्या बता रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रदीप खंडेलवाल जी भी लिखते हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर पल खूबसूरत होता है, पर इससे ज्यादा खूबसूरत पल जब हमारा पूरा परिवार हमारी नन्ही पोती के साथ खेलता है।
0: और एक और संदेश आया है, वो कह रही हैं कि सबसे खूबसूरत पल वो था जब मेरे पापा ने मुझ पर पूरा भरोसा कर मुझे पहली बार विदेश भेजा। उन्हें यकीन था कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी और वो विश्वास आज भी मेरी सबसे अनमोल यादों में से एक है। आप हैं मंजू दिल्ली से।
1: बहुत अच्छा, हमारे श्रोता हमें ईमेल भेज रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अब जो हमारी बातचीत है ये दोतरफा हो गई है। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी लेकिन साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी है आपके लिए और मैं उसको इस तरह से शुरू करना चाहूंगी, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता।
0: आज तो तुम बहुत कविता के मूड में हो, है ना कल्पना?
1: कविताएं पसंद है और मुझे लगता है कि कविताओं के माध्यम से हम गागर में सागर भर सकते
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए तो बस ये कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों से कि भाई बच्चे जब नए नए युवा होते हैं तो उनमें जोश ज्यादा होता है और समझदारी कम होती है। ऐसे में कुछ बातें, कुछ सावधानियां उन्हें जरूर बतानी चाहिए जिसमें सबसे जरूरी है उनकी सुरक्षा जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं।
0: भाई आजकल की जो जेंजी है वो तो बहुत समझदार है, वो जानती है भाई ड्राइविंग करें तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें। पर फिर भी हम एक बार ही बता देते हैं उन्हें कि ड्राइविंग सीखना आसान है लेकिन भाई गुस्सा ना करें, थोड़ा गुस्से को नियंत्रण पर रखें। भाई कोई ओवरटेक कर दे, गलत कट मार दे, गाड़ी में कोई नुकसान भी कर देना तो भी खड़े होकर कभी लड़ना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते सामने कौन है, वो कैसा इंसान है। और तुम ये भी नहीं, तुम इतना जानते हो कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है ना कल्पना?
1: बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क पर ईगो जीतने से कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ी जीत है अपने घर सुरक्षित लौटना। सड़क पर बहादुर वो नहीं जो लड़ाई कर दे बल्कि वो है जो माहौल बिगड़ने

0: कहते हैं कि सड़क पर ईगो जीतने से कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ी जीत है अपने घर सुरक्षित लौटना। सड़क पर बहादुर वो नहीं जो लड़ाई कर दे, बल्कि वो है जो माहौल बिगड़ने से पहले वहां से हट जाए।
1: हाँ, और जो है हमेशा जो लाइसेंस ले उसका पेपर दे, एक लर्निंग लाइसेंस दे, और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना सीखें। लाइसेंस के बाद सभी नियमों का, ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और बहुत अच्छे गाड़ीवान बने।

0: है ना? बिल्कुल सही बात है। और इससे होगा क्या कि भाई जब आप अच्छी तरह से नियमों का भी पालन करेंगे और साथ ही आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा शांत भाव लेकर आएंगे तो आपका हर सफर जो है वो सुहाना होगा।
1: और ये भी जरूरी है कल्पना कि हम लोग एक अभिभावक की तरह जब सोचते हैं कि अपने बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ी चलाने ना दें, जो कि कानून कहता है।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सुहाना सफर फिल्म से, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने।
1: और अब हम एक कह देते हैं कि भाई हमारा जो भारत देश है उसमें खान पान जो है वो बहुत विविध है, उसके बारे में कुछ बात कर ले कल्पना।
0: बिल्कुल सही बात है, यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन होते हैं और मौसम के अनुरूप जो व्यंजन होते हैं उनके स्वाद की तारीफ सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बाहर के लोग भी करते हैं जो विदेशों से आते हैं। तो आज आपके लिए लाई हूँ रेसिपी कर्नाटक के कलबुर्गी क्षेत्र की एक पारंपरिक रोटी, कलबुर्गी रोटी की, जो ज्वार से बनी एक पौष्टिक देसी रोटी है जो स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। इसके लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है, ज्वार का आटा, गुनगुना पानी और नमक।

0: में फैला लो और गरम तवे पर दोनों तरफ से सेक लो। और भाई हल्का सा घी लगाओ, और बैंगन की सब्जी हो, मूंगफली की चटनी हो, दाल हो, दही हो, हरी मिर्च हो, प्याज हो, भाई तो फिर तो कहने ही क्या है ना कल्पना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद मुंह में पानी आ गया है। और पानी आने के बाद स्वादिष्ट तो ये होती है, लेकिन उसके साथ ही इसके बहुत सारे फायदे होते हैं।
0: पौष्टिक भी होती है जी,
1: फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में भी ये सहायक होती है। लंबे समय तक इससे पेट भी भरा रहता है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय
1: के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं।

आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:21 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अपने समय की सबसे अग्रणी और सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक, कपूर खानदान में जन्मी मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में। जी हां, वही करिश्मा कपूर जिन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया जो कपूर खानदान में वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़कर फिल्मों में काम करने वाली पहली महिला अदाकारा बनी। जी हां, इससे पहले कपूर खानदान में महिलाओं के फिल्मों में काम करने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था।

करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई शहर में अभिनेता रणधीर कपूर के घर हुआ था। करिश्मा कपूर के दादा मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक राज कपूर साहब थे और उनके परदादा अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। कपूर खानदान में पली बड़ी करिश्मा कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली और इसीलिए करिश्मा कपूर को बचपन से ही स्टेज शो करना, अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना और एक्टिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन व्यवसायिक रूप से इन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इनकी मां बबीता ने इन्हें काफी सपोर्ट किया और फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी और फिर मिली बॉलीवुड को एक बेहतरीन अदाकारा।

करिश्मा कपूर ने सन 1991 में मात्र 16 वर्ष की आयु में रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और इनके साथ इस फिल्म में थे अभिनेता हरीश कुमार। ये फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया था कि अब करिश्मा कपूर दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाली हैं। इसके बाद सन 1992 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर की पहली सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए अभिनेता अजय देवगन। इन दोनों की जोड़ी ने आगे चलकर भी कई सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने सन 1992 से लेकर सन 2001 तक एक से बढ़कर एक फिल्में दी और उस समय के तकरीबन सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया, जिसमें अभिनेता गोविंदा, सलमान खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय कुमार और आमिर खान आदि शामिल हैं। गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को पर्दे पर लोगों ने खूब पसंद किया और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिनमें फिल्म मुकाबला, कूली नंबर वन, राजा बाबू साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन काफी सफल फिल्में रहीं। बात करें उनकी कुछ और चर्चित फिल्मों की तो फिल्म अनाड़ी, कृष्णा, गोपी किशन, सुहाग, अजय और जीत आदि फिल्में भी काफी सफल रहीं। साल 1996 में अभिनेता आमिर खान के साथ आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी उनके जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही और इस फिल्म ने न सिर्फ अभिनेत्री करिश्मा कपूर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही और इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के लिए एवर ग्रीन होते हैं।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से फिर नवाजा गया और सन 2001 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के क्रिटिक्स पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने कई खट्टे मीठे अनुभवों का सामना करते हुए सन 1991 से लेकर अब तक अपना फिल्मी सफर जारी रखा और इस साल वो वेब सीरीज ब्राउन में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आईं। दोस्तों, आज से ठीक दो दिन बाद यानी 25 जून को उनका जन्मदिन है, तो हम सभी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह से हम सभी का मनोरंजन करती रहें। दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड्स दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक

0: और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कूरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तरफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तजारत और सनत, अदवियात, अदब व तालीम, खेलकूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: मैं आपका

0: रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: मैंने आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आजादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
1: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी

0: भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ से इकतसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इकतसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने यह भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्दे जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुर्दबुर्द के इल्जामात की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को यह रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकायक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वजीरों, सेक्रेटरीज, जिला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, मकरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबियर्ग में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मुकदम किया है और इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 जगहों पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conduct searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case.

0: में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद

0: एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि

0: भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों

0: किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात।

0: मशरूम है ये बहुत ही पौष्टिक और किसान भाइयों के लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत भी है। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मशरूम है उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण किसान भाइयों को कई बार चिंता का कारण भी बनते हैं। लेकिन अब नई नई तकनीकों और नई नई जानकारियों के साथ अगर किसान भाई मशरूम की खेती कर रहे हैं तो अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है या उनकी शेल्फ लाइफ कम है तो उन्हें क्या करना चाहिए? आज का विषय कुछ ऐसा ही खास है हमारा, और आज विषय मशरूम प्रसंस्करण कब, कैसे और क्यों। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, प्रधान वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हर बार के हमारे एक्सपर्ट आते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं, नए नए विषय पर देते हैं, और आजकल तो हमारी सरकार भी इस ओर बहुत जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है किसान भाइयों के लिए कि वो अपनी मिट्टी की जांच कराएं, नई नई फसलों का जो उत्पादन है उसको नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, नई नई तकनीकों से कैसे करते हैं, कृषि विज्ञान को अपनाते हुए कैसे करें। इसी दिशा में है कि खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है और वो 1 तारीख से शुरू हुआ और 30 जून तक चलेगा। तो खेत बचाओ अभियान जो है वो क्या है, इसका उद्देश्य?
1: खेत बचाओ अभियान जो है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम जो हमारी गवर्नमेंट अब लेकर आ रही है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो हम लैब्स में रिसर्च करते हैं, नई नई नई चीजें बनाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचे ताकि वो उसका लाभ ले सके। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका अब ये सोचा गया है कि डायरेक्टली जो साइंटिस्ट हैं, जो चीजें डेवलप कर रहे हैं, वो ही किसानों से जाकर मिले, उनकी प्रॉब्लम्स भी समझें और साथ में नए नए तरीके के सोल्यूशंस और टेक्निक्स जो हम बना रहे हैं उनको बताएं। इसमें जो अभी मूल रूप से किया जा रहा है और जो जानकारी दी जा रही है वो ये है कि हमें अपनी जमीन, अपनी मिट्टी का कैसे ख्याल रखना है, किस तरीके से हमें अपनी, हर किसान को अपनी मिट्टी का ध्यान रख के उसका एनालिसिस कराना चाहिए, और जिस चीज की सच में कमी है उतना उसी चीज को अगर उसमें मिलाया जाए, उसी उर्वरक को, उसी फर्टिलाइजर को उसमें मिलाया जाए तो वो कैसे कोई भी खराब इफेक्ट नहीं आने देगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और ज्यादा समय तक हमारी मिट्टी की जो मूल्य वैल्यू है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो ये एक साइंस डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे किसानों को समझनी चाहिए और वो ये चीज समझें, इसलिए ये किया जा रहा है कि किसान से डायरेक्ट साइंटिस्ट की मुलाकात की जाए।
0: तो क्या खेतों तक पहुंच रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक?
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि सामने रूबरू होकर किसान और एक्सपर्ट के साथ जब बातचीत होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है किसान।

0: माना जाता है। इसके साथ साथ विटामिन डी एक और ऐसी चीज है जो इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ी कम है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफी प्रेविलेंट है इंडिया में, स्पेशली औरतों में, विमेन एंड किड्स। तो इनके लिए भी मशरूम एक ऐसा स्रोत है जिसमें इकलौता ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें कि प्रो विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में आकर आसानी से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छा फाइबर क्वांटिटी है जो हमारे पेट की हेल्थ को, कोलोन की हेल्थ को अच्छा रखता है। और जो आप कहें तो फैट जिसे हम कहते हैं वो काफी कम मात्रा में है, थोड़ा है और अच्छी क्वालिटी का फैट है। तो न्यूट्रिशन की अगर लेवल से या वैल्यू से देखा जाए तो मशरूम बहुत ही हेल्दी है खाने के लिए,
1: और इसकी कई वैरायटीज भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम इसी पर विषय पर बात करने जा रहे हैं। और अश्वनी बता दें कि
2: नए श्रोता कार्यक्रम के साथ अभी अभी जुड़े हैं।

0: कुछ साल पहले तक मशरूम की जानकारी कम थी। जो मशरूम सबसे ज्यादा खाया जाता था वो व्हाइट बटन मशरूम, सफेद बटन मशरूम जिसे हम कहते हैं, वो होता था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च भी बढ़ रही है और लोगों को समझ भी आ रहा है, खाने वाले मशरूम की किस्में भी हाँ भारतीय बाजारों में अब मिलने लगी हैं। तो बटन मशरूम के अलावा ऑयस्टर मशरूम एक मशरूम है जो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। साथ ही में अलग अलग रीजन में अगर हम बात करें, मिल्की मशरूम हो गया, पैडी स्ट्रॉन्ग खुम्ब जिसे पराली खुम्ब भी कहा जाता है, वो उड़ीसा और झारखंड वाले एरियाज में काफी पॉपुलर होता जा रहा है। तो और मशरूम्स भी हैं जो के बारे में लोग जानकारी समझ रहे हैं, उनके वैल्यू समझ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, अगर व्यापार की बात की जा रही है, तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है लोगों को यह भी समझ में आने लगा है कि खाने वाले मशरूम के अलावा मेडिसिनल मशरूम भी हैं, जिसमें ऐसी वैल्यू है जो हमारी कुछ बीमारियों को रोकने में, धीमा करने में या आने से पहले ही उन्हें रोकने में सक्षम है। और इसका भी काफी व्यापार होने लगा है, जैसे कि गैनोडर्मा मशरूम हो गया, शिटाके मशरूम हो गया, ये भी कुछ ऐसे मशरूम्स हैं, लायंस मेन मशरूम जिसे हम कहते हैं, शेर के बालों जैसा वो दिखता है इसलिए, टर्की टेल एक और ऐसा मशरूम है। ये कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू है, जिसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को समझ में आता जा रहा है कि काफी कम अमाउंट में उगाने में भी काफी पैसा कमाया जा सकता है इन मशरूम्स से।
1: डॉक्टर साहब, जब पैसा कमाने की बात आती है तो हम प्रसंस्करण की बात करते हैं, तो प्रसंस्करण क्या है और ये क्यों जरूरी है किसान भाइयों के लिए?
0: प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, मशरूम्स की स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मशरूम के साथ एक छोटा सा लिमिटेशन है कि इसकी लघु अवधि जिसे हम शेल्फ लाइफ भी कहते हैं वो काफी कम होती है। सो ये एक चीज है कि एक बार हमने मशरूम को जब हार्वेस्ट कर लिया, या फिर अगर हम समय पर नहीं हार्वेस्ट करते हैं और वो बैग्स में लगा ही रहता है, तो भी ये बड़ा होता जा रहा है, बेसिकली बूढ़ा होता जा रहा है। तो अगर हमने इसे टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया और अगर हम बाजार तक नहीं पहुंचा पाए तो ये बहुत जल्दी खराब होता है। 2 से 3 दिन का बटन मशरूम का है, अगर हम थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं तो हम उसे 1 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ी हार्ड प्रोसेसिंग करते हैं, कैनिंग जैसा कुछ करते हैं तो 1 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बट अलग अलग तरीके का प्रसंस्करण अलग अलग एंड यूज के लिए, मशरूम की वैल्यू को बचाने के लिए और फाइनेंशियली पैसों के हिसाब से भी उसको, कि किसानों को समय मिले उसको ज्यादा बेचने का, ये बहुत ही अनिवार्य सा हो जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर बिंदवी, जो मशरूम की शेल्फ लाइफ सामान्यतः कितनी होती है और कटाई के बाद कितने समय में उसका प्रसंस्करण कर लेना चाहिए?
0: देखिए, अगर बटन मशरूम की या पराली खुम की इनकी हम बात करते हैं, तो इसकी शेल्फ लाइफ तोड़ने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद 2 से 3 दिन की ही है, अगर हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं तो।
1: अच्छा।
0: लेकिन थोड़ी थोड़ी हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, प्रसंस्करण करने के 2 तरीके हैं कि क्या हम मशरूम को फ्रेश फॉर्म में ही खाना चाहते हैं, यानी कि उसका सब्जी बनाकर ही खाना चाहते हैं, तो शेल्फ लाइफ हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, तो किसानों को थोड़ा समय मिल जाता है। इसमें कुछ हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें अगर हम मशरूम को धो दें या एडिबल कोटिंग कर दें और तो उसकी लघु अवधि जो है 3 दिन से बढ़कर 7 दिन हो जाएगी, 8 दिन हो जाएगी, या फिर हम मिनिमल प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं कि हमने उसे पिनट बॉक्सेस, जैसे मशरूम बाजार में आजकल आता भी है नीले रंग के डब्बों में क्लिंग फिल्म रैप के साथ, तो उससे शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा हमारा तरीका यह है लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग, मानिए आज मैंने मशरूम उगा कर रखा है बट मैं इसको बेचना चाहता हूं 1 साल बाद, या मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, बाहर भेजना चाहता हूं, तो कुछ अलग तरीके की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि डब्बा बंदी हो गई, कैनिंग जिसे हम कहते हैं, इससे मशरूम की शेल्फ लाइफ 1 साल तक भी की जा सकती है।
1: अच्छा।
0: ये दोनों तरीके हैं अगर हम मशरूम को फ्रेश फॉर्म में खाना चाहते हैं तो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोसेस प्रोडक्ट में डालना चाहते हैं, जैसे कि मशरूम का सूप हो गया, मशरूम के बिस्किट हो गए, अगर इस तरीके के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने हैं तो हम मशरूम को पहले ही सुखा कर रख सकते हैं। मशरूम का बेसिकली सुखा कर पाउडर कर आटा बना लिया हमने, और फिर वो आटा हमारा इंग्रेडिएंट बन जाता है, एक चीज बन जाती है जिसे हम दूसरे प्रोडक्ट्स में डाल के उसके प्रोडक्ट्स बना के फिर उस तरीके का मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन करके भी बेचकर उसकी वैल्यू।
1: तो डॉक्टर बिंदवी, ये कहा ना आपने कि जैसे बिस्किट बना लिए, इसका पाउडर बना लिया, तो इससे और कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: मशरूम से कई सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कहीं हमारे ICR इंस्टीट्यूट में भी डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि मशरूम का प्रोटीन रिच बार, जैसे कि मशरूम के इंस्टेंट नूडल्स, मैगी जैसा प्रोडक्ट जिसमें कुछ आटा हटाकर मशरूम का पाउडर मिलाया गया है, क्योंकि आटे से ज्यादा प्रोटीन है मशरूम पाउडर में तो वो ज्यादा न्यूट्रिटिव है। इसी तरीके से मशरूम की कुकीज, बिस्किट, केक, इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, और नई रिसर्च भी की जा रही है कि किस तरीके से मशरूम्स को एक कन्वीनियंट प्रोडक्ट बनाया जा सके, जिससे कि बच्चे जो चिप्स खाना चाहते हैं उनके लिए अगर हम कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट्स में मशरूम मिला दिया जाए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी मशरूम के पाउडर से बनाए जा सकते हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी।

0: है अश्वनी
1: जी। डॉक्टर बिंद भी कुछ हमारे किसान मित्र वो अक्सर कहते हैं कि जब वो प्रसंस्करण करते हैं तो जो मशरूम है उसका रंग काला पड़ने लगता है, तो इसका क्या रीजन है और इसे काला

0: से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
1: प्रसंस्करण करने से कालापन नहीं होता है, अगर आप देरी से प्रसंस्करण कर रहे हैं तो कालापन आता है। बेसिकली कालापन आना शुरू हो जाता है तब हमारे किसान समझते हैं कि अब इसे प्रसंस्कृत कर लेते हैं ताकि ये बच जाए, वो तरीका सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, जब मशरूम अच्छी फॉर्म में है, एक ना विजन होना चाहिए कि हमें असली में बेचना कहाँ है। तो जब हमारे पास वो वैल्यू है, अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को टाइम से ही प्रोसेस करेंगे तो कालापन नहीं आएगा। कालापन आता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से। उसके भी कुछ तकनीकें हैं कि अगर हम मशरूम को ब्लांच कर लें या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की अप्रूव्ड लिमिट के हिसाब से उसको ट्रीट कर लें तो हम वो कालापन आने से रोक सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी का ड्राइड, जनरली जब मशरूम सुखाया जाता है तो ये परेशानी लोग फेस करते हैं, उसको रोका जा सकता है।
0: और डॉक्टर बिंदवी, क्या ऐसी कोई खास किस्म है मशरूम की जिसकी की प्रसंस्करण में बहुत ज्यादा मांग रहती है, या ऐसी कौन सी किस्म है जिसको कि हमारे किसान भाई आसानी से प्रसंस्करण कर सकते हैं उस किस्म का?
1: प्रसंस्करण तो देखिए आप किसी भी मशरूम का कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल मेडिसिनल मशरूम का बहुत प्रचलन चल रहा है। मेडिसिनल मशरूम का मतलब ये है कि हमको वो सब्जी बनाकर एक साथ बहुत सारा नहीं खाना होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में खाया हुआ मशरूम खाया हुआ है तो वो भी बहुत इफेक्टिव है हमारी बॉडी में। कुछ एंटी डायबिटिक हो गया, कुछ एंटी कैंसरस हो गया, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमें प्रसंस्करण जो करना है वो दूसरे तरीके का करना है कि वो जो स्पेसिफिक चीज है उसके अंदर जो ये हमें फंक्शनैलिटी दे रही है हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका टैबलेट बना लें, उसका टिंक्चर बना लें, तो इस तरीके का भी प्रसंस्करण किया जा रहा है।
2: तो डॉक्टर साहब और भी बातें करेंगे आपसे मशरूम के ऊपर और इसके कौन कौन से चरण होते हैं प्रोसेसिंग के, इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे हैं,
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, और आज का हमारा जो विषय है वो है मशरूम प्रसंस्करण कब कैसे और क्यों, और हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदवी जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मशरूम की बात कर रहे हैं, सबसे इसमें जो चरण होता है जरूरी वो है मशरूम को सुखाने की प्रक्रिया, तो ये कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
10: देखिए, मशरूम को सुखाने की हमारे पास कई सारे तरीके के ड्रायर होते हैं कि हमें किस टेम्परेचर पर ट्रीट करना है, कितने टाइम तक के लिए सुखाना है, इस सब का मशरूम की क्वालिटी पर असर, मशरूम के पाउडर या सूखे मशरूम की क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम मशरूम को उस स्टेज में सुखाएं जब वो खुद अच्छी क्वालिटी का है। देखिए, अगर मशरूम खराब हो गया और उसके बाद आपने सोचा कि अब इसको सुखा लेते हैं तो वो सही नहीं है, वो सूख तो जाएगा लेकिन वो काले रंग का होगा, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसका कुछ ऑफ फ्लेवर होगा, कुछ ऑफ टेस्ट होगा, तो उसमें वो खराब चीजें जो आ गई हैं वो ड्राइंग हटा नहीं सकता। लेकिन उसकी अगर हम अच्छे लेवल पर ही उसको सुखा लेते हैं तो अच्छा है। अब हमें ये समझना है कि मशरूम जो है किस स्ट्रक्चर का है। अगर आप ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो वो पतला थोड़ा झिल्लीदार होता है, उसको डायरेक्टली ड्रायर में रख के सुखाया जा सकता है, लेकिन

0: बटन मशरूम जो है वो थोड़ा गोलाकार है, हम अगर पूरा बटन मशरूम का बटन ही उठाकर पूरा पूरा ड्राई करेंगे तो वो नहीं सूखेगा, उसको हमें स्लाइस करके सुखाना है।
1: अच्छा।
0: तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि सरफेस एरिया कितने एयर को एक्सपोज हो रहा है ताकि वो जल्दी और सही तरीके से सूख जाए।
1: तो डायरेक्ट धूप में सुखा सकते हैं?
0: जी हाँ, भारत में धूप अच्छी है तो अगर अच्छी धूप मिल रही है तो सोलर ड्राइंग कर सकते हैं, सन ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर करना है तो टेक्निकल ड्रायर्स यूज करने चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, हाँ जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो आवाज आ रही है अब तक?
2: हेलो
1: हेलो आवाज आ रही है? हमें तो इनकी आवाज मिल रही है, चलिए दूसरे कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आवाज नहीं आ रही है किसी भी कॉलर को। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कारण हो सकता है आवाज ना पहुंचने का, उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो डॉक्टर साहब, मशरूम सुखाने की बात चल रही थी, तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं और सावधानियां हमें क्या रखनी है?
1: मैं सावधानियां ही आपको बता रही थी कि सबसे पहले तो हमें अच्छी क्वालिटी का मशरूम यूज करना है, फिर उसका सरफेस एरिया ऐसा होना चाहिए कि वो गर्मी को एक्सपोज, जो हीट हम दे रहे हैं उसको एक्सपोज हो। साथ ही साथ बहुत सारे किस्में ड्रायर की अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कैबिनेट ड्रायर हो गया, सोलर ड्रायर हो गया, फिर थोड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी भी होती है। अगर मेडिसिनल मशरूम की बात करें तो उसमें वो जो गुणवत्ता वाली चीज है, अगर वो गर्मी हीट से एक्सपोज हो गई तो वो तो खराब हो जाएगी। तो उस केस में हमें थोड़ा हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है, जैसे कि फ्रीज ड्राइंग हो गया या वैक्यूम ड्रायर हो गया। तो अलग अलग तरीके हैं ड्राइंग करने के, डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसकी क्या मूल्य हो, असल में उस प्रोडक्ट में क्या वो मूल्यवान चीज है जिसे हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं।
2: जी डॉक्टर बिंदी, कुछ हमारे युवा साथी हैं जो कि मशरूम प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए ये उद्यम लगाने से पहले?
1: सबसे पहले तो जरूरी यही है कि आप समझिए कि आपका मार्केट क्या है, आप कहाँ बेचना चाहते हैं, किसे बेचना चाहते हैं और क्या बेचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उद्यम लगा रहे हैं तो ये जरूरी है ये समझना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि अगर फ्रेश मशरूम आप करना चाहते हैं तो आपकी मार्केट कितनी है, फिर हमें उसी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स लेने होंगे। अगर कोई डिहाइड्रेटेड मशरूम, मानिए आप किसी सूप बनाने वाली कंपनी को मशरूम का पाउडर बेचना चाहते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन जैसा सेटअप इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको एक डिहाइड्रेटर खरीदना होगा, एक पैकिंग लाइन खरीदनी होगी, नाइट्रोजन फ्लशिंग लाइन खरीदनी होगी। तो इस तरीके की लाइन्स हम ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैनिंग करनी है तो उसके लिए हमें अलग तरीके के इक्विपमेंट्स चाहिए। हम तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा मार्केट क्या है। जब हमने वो डिसाइड कर लिया तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का प्रोसेसिंग करना है।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर हमें ये प्रोसेसिंग से गुजरना है तो हमारे बहुत से युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एज ए रोजगार अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग का प्रावधान है आपके यहाँ पर?
1: जी जरूर। अगर इस बारे में बात की जाए तो ICR के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च आता है, जो कि सोलन में है। वहां पर साल में कई सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ये दोनों ही कैटेगरी कहें आप लोगों के लिए हो सकती हैं कि अगर किसान है तो वो ट्रेनिंग हिंदी में दी जाती है और अगर कोई अंग्रेजी में जानना चाहता है तो भी अंग्रेजी में भी वो ट्रेनिंग अलग अलग टाइम पर की जाती है और अलग अलग उसकी भी ट्रेनिंग है कि अलग अलग पीरियड की। एक 3 दिन की ट्रेनिंग है जो थोड़ा उगाने के बारे में ज्यादा जानकारी देती है, एक 7 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें उगाना और प्रसंस्करण

0: हमारे जो व्यवसाय करने के लिए नई चीजें ढूंढ रहे हैं वो जरूरी नहीं है मशरूम ही उगाएं, वो मशरूम का बीज भी बना सकते हैं, तो वो भी एक उद्यम लगाने की तकनीक है। ये तो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च की बात हो गई, साथ ही साथ कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और प्रसंस्करण की अगर बात की जाए तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मशरूम प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जाती है।
1: तो अगर कोई युवा कांटेक्ट करना चाहे तो कहां से कर सकता है? सीधा
0: डायरेक्टली अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च की, तो वहां पे एनुअल कैलेंडर ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें पूरे साल कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है उसकी जानकारी मिल सकती है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो।
0: हेलो,
1: हमें तो उनकी आवाज मिल रही है लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, इस बात का हमें खेद है। और जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है, हमारे बहुत सारे साथी चाहते हैं कि उनको एक अच्छा सा गाना भी सुनवाया जाए, और हमारी डॉक्टर साहिबा भी चाहती हैं कि एक प्यारा सा गाना सुनवाया जाए। तो आइए सुनवाते हैं आपको खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

0: और अश्वनी, धरती मेरी, माता पिता आसमान, और देखिए ना, हम स्टूडियो में बैठे हैं और यहाँ से नजर आ रहा है बाहर का नजारा कि बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं। हाँ। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ बादल,
1: कुछ बारिश हो जाए,
0: बारिश लेकर आए,
1: धरती को थोड़ी ठंडक मिले।
0: जी जी, बिल्कुल ठंडक मिले। और आज का हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मशरूम प्रसंस्करण कब, कैसे और क्यों, और किसान भाइयों के लिए एक आमदनी का बहुत अच्छा जरिया भी है। डॉक्टर साहब, ये कि अगर किसान भाई चाहते हैं कि प्लांट लगाए वो, तो प्लांट लगाने के लिए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितना खर्च आता है इस पर?
2: प्रसंस्करण प्लांट हमारे जैसे दो तीन तरीके के हो गए अगर मशरूम से उद्यम करना है तो। एक तो हो गया स्पॉन का, तो स्पॉन करने के लिए तो दो छोटा कमरा जैसा भी एरिया काफी रहता है, जिसमें हमें कुछ ऑटोक्लेव की जरूरत पड़ती है, कुछ सीड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कुछ कॉटन ग्लास बॉटल स्टोरेज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके का हमें एक स्टोरेज रूम और एक स्टेराइल चेंबर चाहिए। स्टेराइल मतलब ऑटोक्लेव होना चाहिए वहां पे, जो इतना गर्म तापमान रखे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें मशरूम के अलावा और भी कोई जीवाणु अंदर ना आ सके, क्योंकि मशरूम एक प्रकार का इनिशियल स्टेज में तो माइसीलियम जीवाणु ही है, तो अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो खराब हो सकता है। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। दूसरा हमारा मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट।

0: जो है वो सिर्फ क्योंकि मशरूम एक ठंडे समय में उगने वाला क्रॉप है, तो अगर जो लोग सिर्फ सर्दी में करना चाहते हैं तो वो बैम्बू से भी कमरे बनाकर, हर साल नए कमरे बनाकर उसमें भी उगाया जा सकता है। तो वो थोड़ा हमारा लो कॉस्ट इंटेंसिव सिस्टम हो गया, लेकिन वो सीजनल है। आप गर्मियों में बैम्बू में नहीं उगा सकते क्योंकि तब आप तापमान, ह्यूमिडिटी इस सबको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तीसरा हमारा है प्रोसेसिंग। अगेन, आप किस तरीके की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर ड्राइंग करनी है और कैबिनेट ड्रायर या ट्रे ड्रायर हम यूज कर रहे हैं तो ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर से हमारा 12 से 20 ट्रे वाला जो ड्रायर आता है वो 2-2.5 लाख रुपए में आ जाता है, तो और ये कमरे में उसको रखा जा सकता है। इसी तरीके से पैकेजिंग लाइन भी 1.5-2 लाख में आ जाती है, तो एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आपको कैनिंग लाइन लगानी है तो वो अगेन थोड़ा हाई कॉस्ट सिस्टम हो गया, बट कैनिंग का फायदा यह है कि आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कई सारे तरीके के प्रसंस्करण तकनीकें हैं जिसका अलग अलग।
1: और इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी किसान मित्रों को दी जा रही है?
0: जी हाँ, इस समय हमारी जो सरकार है वो स्मॉल माइक्रो बिजनेस उसको काफी सपोर्ट कर रही है, और उसमें मशरूम भी, हॉर्टिकल्चर में मशरूम भी फॉल करता है, और कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो ट्रेनिंग में भी, और अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि पीएमएफएमई स्कीम जो है उसमें किसानों को कुछ तरीके की सब्सिडी मिल सकती है, और डायरेक्टली भी उनके अकाउंट में पैसा आ सकता है अगर वो उसके थ्रू लगाना चाहते हैं। इसी तरीके से एफपीओज को भी काफी सपोर्ट है, अगर कुछ किसान मिलकर एक एफपीओ बनाना चाहते हैं मशरूम प्रोसेसिंग का तो उसको काफी सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसमें भी अगर कुछ किसान और कुछ युवा लोग मिलकर एक उद्यम लगाना चाहते हैं तो उनको उस तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। इसी तरीके से एनएचपी, नपीडा, कई सारी ऐसी स्कीम ऑर्गेनाइजेशन है और स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से जो मशरूम्स को काफी प्रमोट कर रही हैं।
2: और डॉक्टर बिंदबी, अब चलते चलते क्या हमारे उन जो मशरूम का उत्पादक कर रहे हैं उन किसानों को क्या संदेश देंगी?
0: जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मशरूम उगाइए, क्योंकि ये बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक क्रॉप है। इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि खाने वाले लोगों को भी अब समझ आ रहा है कि ये बहुत न्यूट्रिशियस है, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हमें, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि रिस्ट्रिक्ट ना करें अपने आप को सिर्फ पॉपुलर बटन मशरूम में, थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, नई तरीके के मशरूम्स की किस्मों में भी जाएं।
2: जी बिल्कुल। और आज हमें मशरूम प्रसंस्करण कब, कैसे और क्यों, इस विषय पर डॉक्टर बिंदबी अरोड़ा, प्रधान वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आई, हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अश्वनी, इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और अश्वनी ने।
2: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित

0: सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threat for us.
1: अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है, जो देश के खिलाड़ियों को सशक्त बना रही है और प्रत्येक नागरिक को खेलों को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों का जश्न मना रहा है, जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने सुबह फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. In a social media post, Prime Minister Modi said Dr. Mukherjee dedicated his life to the country's development. He said Dr. Shyama Prasad Mukherjee's unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations. Union Home Minister Amit Shah today said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision has been realized with the abrogation of Article 370 Mr. Shah paid tribute to Dr. Mukherjee on his death anniversary, describing him as one of India's greatest leaders whose contributions helped preserve the country's unity and integrity. Addressing a gathering in New Delhi during the launch of NAFID's auction portal, Mr. Shah said, June 23rd holds special significance for Bharatiya Janata Party workers, as it marks the day Shyama Prasad Mukherjee sacrificed his life for national unity. On the occasion, Mr. Shah also said the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFID, is helping around 74 lakh farmers in the country. He launched NAFID's auction portal, nafix.in, in New Delhi. India has welcomed the Memorandum of Understanding, MOU, reached between the United States and Iran. Addressing the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, National Security Advisor, NSA, Ajit Doval said the development will strengthen energy security around the world. He also welcomed the opening of the Strait of Hormuz and highlighted that it will help remove supply chain bottlenecks and address shortages of commodities such as fertilizers and chemicals.
2: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
4: India and the United States opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jameson Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before the 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. The National Testing Agency, NTA, today announced the results of Common University Entrance Test, CUET 2026, for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, more than 15 lakh candidates registered for the entrance test this year, while over 11 lakh candidates appeared for the examination. The agency said the examination was conducted over 19 days in 35 shifts across 321 cities, including 13 international locations. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States, last night to secure a place in the round of 32. And with that, we end this news bulletin.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 3:30 हुए हैं और इस वक्त आपके प्यारे मधुर दिल को छूने वाले, दिल में उतर जाने वाले, मन को भाने वाले गीतों के साथ पूरा होगा मनभावन का ये हसीन सफर। मनभावन के इस सफर पर आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। भेजिए अपनी पसंद, अपनी फरमाइश हमें जल्दी से इस नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868868753 9868868753 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 अंजलि है आपके साथ और ये जो पहला गीत आप तक पहुंच रहा है, आप सबके नाम जो गीत है वो हमें, उसकी फरमाइश हमें, हम तक पहुंची है प्रकाश चंद्र गोगिया साहब की, जागृति इंक्लेव कड़कड़ डूमा से। प्रकाश चंद्र जी बहुत हमारे पुराने श्रोता हैं, सुनने वाले हमारे साथी हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका, इतने लंबे समय से आप साथ हैं आकाशवाणी के। ऐसे ही आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना सुझाव, अपनी राय, अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए और अपना ये प्यारा सा साथ आकाशवाणी के साथ बनाए रखिए। तो ये लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। शराबी फिल्म से है, 1964 की ये फिल्म है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, मुझे ले चलो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मन भावन का ये हसीन सा सफर यहाँ पर हम तय कर रहे हैं आपके गीतों के साथ। और ये जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, ये इसकी हमें फरमाइश पहुंचाई है मनोहर लाल गांधी ने विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और इसके साथ ही और भी हमारे साथी हैं, भगवती सिंह प्रहलादपुर नई दिल्ली से, साथ में दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू हैं रघुवीर नगर दिल्ली से, इनका हमें संदेश मिला है। साथ ही विजय सुरलकर और रतनमाला है महाराष्ट्र से। उत्तराखंड से हमें एक संदेश मिला है, किसी भी गाने के साथ अपनी फरमाइश, अपने गीत शामिल करने के लिए इन्होंने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। निसार सलमानी है, नौशाद सलमानी है, बेबी आलिया है, आयान आबू है उत्तराखंड धनौरी दिल्लीवाला से। तो चलिए, आवारगी फिल्म का ये गीत गुलाम अली खां साहब की आवाज में, चमकते चांद को।

अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची है वो है इम्तिहान फिल्म से। किशोर कुमार साहब की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे और हमारे जो दोस्त हैं सत्यप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, रोहिणी से आपका मैसेज हमें मिला है। किशन वंजानी है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से, आपका मैसेज हम तक पहुंचा है। इसी तरह हमारे और भी साथी हैं जिनके संदेश हम तक पहुंचे हैं। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी भाटिया, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और हरिद्वार से हमें संदेश, बहुत ही पवित्र पावन नगरी से ये संदेश आया, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहा का। इसी तरह से सनावत से शेख मूसा मोहसिन है और मोहाली पंजाब से बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने हमें यह संदेश पहुंचाया।

मन भावन का यह हसीन सफर आपके गीतों के साथ पूरा हो रहा है। अगले जो गीत की हम तक फरमाइश पहुंचाई है, पहले फिल्म का नाम बता देते हैं, लव स्टोरी फिल्म से ये गीत है और कस्बा बिल राम से इरशाद अहमद शाह।

शाहजहां बेगम, मरियम जैनब, इनका हमें मैसेज आया है और हमारे कौन से साथी हैं चलिए देखते हैं। और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमें फरमाइश की है कि भाई किसी भी गीत के साथ आप हमारा नाम जरूर शामिल करें। तो ये हीरा मणि वर्मा है, पारस मणि वर्मा है, पुष्पेंद्र मणि वर्मा है, नौखेलाल वर्मा है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका हमें संदेश मिला है। और हमारे कौन से साथी हैं, तो एक संदेश हमें आपका भी मिला है साथ में, ये है नाहरकोरा जिला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू हैं, जामुन देवी साहू हैं, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू हैं, इन्होंने हमें संदेश पहुंचाया। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं रहा, गीत सुन लेते हैं। इनकी पसंद का लव स्टोरी फिल्म का ये गीत है, आप तक पहुंच रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और ये जो कार्यक्रम का अंतिम गीत है वक्त फिल्म से है, जिसके लिए हम तक फरमाइश पहुंचाई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के बहुत सारे सदस्य। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं ना, जो कई साथी हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हमने तो मतलब अपना नाम पहुंचाया लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ना वक्त की कितनी हमें थोड़ी पाबंदी रहती है। अभिजीत गोहाणकर रही हैं, श्रीमती सरिता गोहाणकर हैं, प्रतिमा सिद्धांत गोहाणकर हैं, लाडला टुकटुक गोहाणकर हैं, एकांत सुमित गोहाणकर हैं और कुमारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार

0: को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोप के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री मसेत्सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदुनियान के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न संबंधित टीमों के साथ चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमरीका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये कार्रवाई अमरीका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते की समय सीमा के अनुरूप है। बैंकिंग, बीमा और समुद्री परिवहन सहित अन्य संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंधों से राहत दी गई है। अमरीका में बिक्री और वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर ईरान से तेल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार सीयूईटी के कारिक पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एनटीए के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. The President will confer 65 Padma Awards today. More from our correspondent.
2: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mamuti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashvani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision had been realized with the abrogation of Article 370. Mr. Shah paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his death anniversary, describing him as one of India's greatest leaders whose contributions helped preserve the country's unity and integrity. Addressing a gathering in New Delhi during the launch of NAFED's auction portal, Mr. Shah said, 23rd of June holds special significance for Bharatiya Janata Party workers as it marks the day Shyama Prasad Mukherjee sacrificed his life for national unity. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have also paid tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his Martyrdom Day. A 3-member special investigation team, SIT,

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह से हम लोग पूरा परिवार डिस्टर्ब था, तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है या फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश से घर के कोने में बंद हो गई थी। और जैसे उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
3: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था और मेरा गला बाकी बचपन से बहुत अच्छा था, तो बड़े बड़े संगीतक भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश कभी कुछ सिखाए जाते थे। वो तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखे, लोगों से बात करना सीखे। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर BHU में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से PhD तक की पढ़ाई मैंने की और स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी जहाँ मुझे

0: काफी मान सम्मान मिला, मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान? आप
0: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया। जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है, तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। तो वाकई आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंदर में। तो लोग मुझे कभी उन्होंने टीचर मुझे समझा ना, मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते, और वो लोग मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते हैं उनका, फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डाली और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
1: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, तरह सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ, और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और 6ठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे, लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, वो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे। कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे, और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं, उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ। आगे

0: Applications for one post of financial advisor in pay level 13 on deputation basis. The last date for submission of applications is 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, refer to www.negrims.gov.in. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India is inviting applications for vacant posts in budget press or deputation or absorption basis. The openings include Technical Officer, Pre-Process in Level 7 and Data Entry Operator Grade B in Level 5 as per the 7 CPC pay matrix. Eligibility criteria, required qualifications and experience for each position are detailed in the official notification. Interested officers should submit applications in the prescribed format along with attested copies of CR dossiers, vigilance and integrity certificates, cadre clearance and a statement of penalties, if any, within 60 days from the date of publication in the Employment News. Applications and queries can also be sent via email to budgetpress.dea@gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एक पद उपलब्ध है जो अनारक्षित है। अन्य आवश्यक योग्यताओं, महत्वपूर्ण तिथियों और सामान्य अनुदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आईआईटी गोवा की वेबसाइट iitgoa.ac.in/careers-iitgoa। ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल छिंगपिंग, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित तथा सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्ध पूर्णतः आवासीय पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल पात्र उम्मीदवारों से टीजीटी सामाजिक विज्ञान, सामान्य कर्मचारी नियमित, काउंसलर संविदा तथा पीटीआई कम मैट्रन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र का प्रारूप और वेतनमान, पात्रता मानदंड और अन्य संबंधित जानकारियां स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वेबसाइट का पता है sschingchip.mizoram.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। बाल मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एक पद अनारक्षित, चिकित्सा अधिकारी आयुष 3 रिक्तियां हैं, जिनमें से एक आयुर्वेद के लिए, एक होम्योपैथी के लिए तथा एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए। इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर को पदों की संख्या या वर्ग में परिवर्तन भारत सरकार के नियमानुसार करने का अधिकार है। आवेदन पत्र, सभी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों से संबंधित कोई भी अन्य सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नोट कीजिए एक बार फिर वेबसाइट का पता www.aimsgorakhpur.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर 20 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 2 पद, सहायक प्रोफेसर सीधी भर्ती 27 पद, सहायक प्रोफेसर संविदात्मक 26 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या है 75। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के प्रोफार्मा के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर की वेबसाइट

0: www.aimsbilaspur.edu.in.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में हो गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों पर रहेगी हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या मना रहे हैं जिनका हम आज जन्मदिन या जयंती। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार मुनीष, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। So the good news is that monsoon is inching forward towards the western coast after stalling last week, but Delhi right now is having a beautiful weather after rains. And as we have been always saying, come what may, rains or hot sunny day or whatever, we will always be there in time with a fresh new episode of our afternoon magazine Parikrama every day for you. And now before we proceed with other stories, first the headlines at this hour.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह सेज श्यामा प्रसाद मुखर्जीज ड्रीम रियलाइज्ड विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
2: Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case.
0: Lionel Messi FIFA विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची।
2: And Munish, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Kanishka Bombing Remembrance Day and International Olympic Day. So let's begin with the first topic, Kanishka Bombing Remembrance Day. Today we remember a tragedy that shocked nations, transformed aviation security, and remains one of the deadliest acts of terrorism in the aviation history, the bombing of Air India Flight 182, commonly known as the Kanishka bombing. Imagine boarding a long-haul international flight, excited to reunite with family, begin a vacation or return home. For the 329 passengers and crew aboard Air India Flight 182 on 23rd of June 1985, that journey would tragically never reach its destination.
0: One of the saddest days indeed in the history of aviation. Ye viman Boeing 747, jiska naam prachin Kushan samrat Kanishk ke naam par rakha gaya tha, Canada se Bharat aa raha tha, aur jab ye viman Atlantic mahasagar ke upar aur Ireland ke tat ke paas ud raha tha, tabhi ek badi durghatna ho gayi. विमान के आगे वाले कार्गो होल्ड में रखे एक सूटकेस के अंदर छिपा एक शक्तिशाली बम फट गया और कुछ ही पलों में विमान हवा में टूटकर बिखर गया और समुद्र में जा गिरा। इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। ये नुकसान बहुत दुखद और बहुत बड़ा नुकसान था। इस विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और मारे गए लोगों में से ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, जिससे घटना कनाडा के इतिहास की भी सबसे भयानक सामूहिक हत्याओं में से एक और विमान को नष्ट करने की अब तक की सबसे बड़ी घातक घटनाओं में से एक बन गई।
2: Yes, but the tragedy did not end there. On the very same day, another bomb exploded thousands of kilometers away at Narita International Airport near Tokyo. The explosion killed two Japanese baggage handlers. Investigators later concluded that this device was intended for another Air India flight but detonated prematurely while baggage was being transferred. The two attacks were linked, forming part of a coordinated terrorist plot. authorities eventually traced responsibility to extremists. The investigation that followed became one of the most complex and extensive criminal investigations in Canadian history, spanning multiple countries and lasting for years.
0: तो कनिष्क बम धमाका आज भी अहम क्यों बना हुआ है? दरअसल इस भयानक मानवीय त्रासदी के अलावा इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा की कमियों को उजागर किया. उस समय सामान की जांच की प्रक्रियाएं आज की तुलना में बहुत ही कम सख्त थीं, लेकिन इस हमले ने बगैर जांचे परखे सामान से जुड़े खतरों को सामने लाकर रखा और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में हवाई अड्डों की सुरक्षा में काफी बड़े सुधार किए गए. सुरक्षा के वो कई उपाय जिन्हें यात्री आज सामान्य मानते हैं, जैसे बेहतर सामान की जांच, यात्रियों और उनके सामान के मिलान की सख्त प्रक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी का बेहतर आदान प्रदान, इस त्रासदी के बाद के वर्षों में और मजबूत किए गए. ये बम हमला इस बात की भी याद दिलाता है कि आतंकवाद अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं आगे तक फैल जाता है और आम परिवारों को प्रभावित करता है, जिनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है.
2: And more than four decades later, memorials in Canada, India, Ireland and elsewhere continue to honor the victims. Families and communities gather each year to remember their loved ones which were lost on that summer day in 1985. The story of Kanishka is not only a story of destruction, it is also a story of remembrance, resilience and the ongoing effort to make air travel safer for millions of people around the world. We remember the 329 passengers and crew members who never completed their journey. Their memory remains an enduring reminder of the importance of vigilance, security and also international cooperation. And moving on to the next topic of the day, it is International Olympic Day. We are also celebrating International Olympic Day, observed every year on 23rd of June across the globe. And today is more than just a date on the calendar. It's a celebration of fitness, friendship, excellence and the power of sport to unite humanity. On this day in 1894, the International

0: करने की कोशिश करना, लोगों, संस्कृतियों और देशों के बीच आपसी संबंध और मेलजोल बढ़ाना, और खुद का, दूसरों का और खेल में निष्पक्षता बनाए रखने वाले नियमों का सम्मान करना। ये मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ मेडल जीत लेना ही नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र, टीम वर्क और दृढ़ता का होना भी है।
1: Yes, Munish, in today's fast-paced digital world, many people struggle to find time for physical activity. To address this challenge, the IOC promotes the global Let's Move campaign. This initiative encourages people of all ages and abilities to dedicate time each day to movement, whether it's walking, cycling, dancing, stretching, playing a sport, or simply taking the stairs instead of the elevator. Supported by organizations such as the World Health Organization, the campaign highlights a simple message. Every movement counts and every step towards a healthier lifestyle matters.
0: यहां भारत में ओलंपिक डे बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया जाता है दोस्तों। स्कूल, स्पोर्ट्स एकेडमी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिटनेस इवेंट, जागरूकता अभियान और खेलकूद की गतिविधियां कई संस्थाएं यहां आयोजित करती हैं। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की खास पहल युवाओं को खेलों से जोड़ने और एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये प्रोग्राम अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने, एक्टिव रहने और ओलंपिक की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सुनने वालों, आप आज ओलंपिक डे कैसे मना रहे हैं? क्या आप आज सवेरे की सैर पर गए? दोस्तों के साथ कोई खेल आप खेलेंगे? किसी फिटनेस एक्टिविटी में शामिल होंगे या बस कुछ मिनट एक्टिव रहकर बिताएंगे? याद रखिए, ओलंपिक मूल्यों को अपनाने के लिए आपको ओलंपियन होने की जरूरत नहीं है। खुद को बेहतर बनाने, दूसरों का साथ देने और एक्टिव रहने की हर कोशिश जश्न मनाने लायक जीत है।
1: एंड ऑन दिस इंटरनेशनल ओलंपिक डे नाउ लेट्स एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। लेट्स मूव, स्टे हेल्दी एंड इंस्पायर दोज अराउंड अस टू डू द सेम। मूव मोर, ड्रीम बिगर एंड कीप द ओलंपिक स्पिरिट अलाइव। हैप्पी इंटरनेशनल ओलंपिक डे टू ऑल ऑफ यू।
0: और दोस्तों, अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास आज खास।
1: एंड लेट्स बिगिन विथ टेकिंग यू ऑल टू तिरुवनंतपुरम। International Olympic Day was celebrated with great enthusiasm in Thiruvananthapuram today as hundreds participated in the Cycling by the Sea rally. The event brought together people from diverse backgrounds in a shared message of fitness and healthy living. We have more on this from our correspondent from Thiruvananthapuram.
2: The Olympic spirit found an unique expression on the shores of Thiruvananthapuram this morning as hundreds of people took part in the Cycling by the Sea rally organized by the Sports Authority of India to mark International Olympic Day. The coastal ride brought together members of women empowerment groups, government employees, cycling club members and fitness enthusiasts from different walks of life, united by the message of fitness and healthy living. Participants pedal along the scenic route with great enthusiasm. Adding to the excitement was the presence of Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia. The minister joined the cyclists on the ride, drawing cheers from participants and giving a major boost to the event. Let's hear some of the participants.
3: This is Satyabhama and I have come to participate in the Cycling by the Sea, the cycling event organized by Fit India as well as Sports Authority of India. And cycling gives a lot of health benefits, physical as well as mental health benefit. It induces happy hormones in the body. So I'm happy and I'm participating in this event as a member of Cyclotrivians Cycling Club.
4: I am Ullas. I'm only a recreational cyclist. Today we are gathered here for Cycling by the Sea with our Minister for Sports, Government of India. It's really happy to join here with this event.
2: Cycling by the Sea turned out to be not just a ride, but a celebration of health, unity and sporting spirit of Kerala's coastline. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस द्वीप समूह में पिछले 12 वर्षों में हुए विकास

0: कार्यों की समीक्षा भी की। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अपने दौरे के दौरान प्रगति पदयात्रा के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन, गांधी पार्क तथा अन्य प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और अंडमान आइडिया समिट 2026 में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था भारत की प्रगति की प्रमुख चालक है तथा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मंत्री ने ग्रेट निकोबार परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि यह परियोजना द्वीप समूह के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किए बिना क्षेत्र के आर्थिक और रणनीतिक विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना समुद्री संपर्क, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। कुल मिलाकर यह दौरा अंडमान निकोबार में विकास, संपर्क और जन कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से

0: में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। कुल मिलाकर यह दौरा अंडमान निकोबार में विकास, संपर्क और जन कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: And the Goa government has strengthened its commitment to the housing welfare for

0: kit homes, enabling them to undertake repairs or rebuild their houses with reduced financial burden. The government has also expanded the scheme's reach by increasing the annual income eligibility limit, allowing more scheduled dry families to qualify for assistance. Officials say the initiative is aimed at improving housing conditions, promoting social welfare, and ensuring dignified living standards for tribal communities across Goa. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन के संस्कृति विभाग द्वारा कल आयोजित फ्यूजन फेस्ट 2026 के तहत विश्व संगीत दिवस 2026 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में संगीत, नृत्य और दृश्य कला के माध्यम से दिव्यांग कलाकारों और बच्चों की असाधारण प्रतिभा, उनकी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया गया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और क्या हुआ वहां, सुनते हैं संवाददाता से।
2: कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों और कलाकारों द्वारा उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दी गई। इसमें मुख्य आकर्षण VR1 की प्रस्तुति रही, जो भारत का पहला पेशेवर व्हीलचेयर डांस समूह है। व्हीलचेयर पर बैठे इन नौजवानों ने माँ तुझे सलाम गीत प्रस्तुति पेश करके सबका मन मोह लिया।

0: इस समूह ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से आत्मविश्वास, समावेशिता और संघर्षशीलता का प्रेरक संदेश दिया। वहीं वाटिका स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के विद्यार्थियों ने ऊर्जावान भंगड़ा प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी द्वारा दिव्यांग बच्चों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने युवा कलाकारों को अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री गुलाबचंद कटारिया ने दिव्यांग कलाकारों के लिए 5,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। इस प्रकार की यह पहली पहल है जिसका उद्देश्य उनकी कलात्मक उपलब्धियों तथा समाज में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: तो अनुजा, आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और अपने श्रोताओं को बताते हैं वहां की हलचल। फीफा विश्व कप में आज अमरीका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन की टीम को 2-1 से मात दी। लियोनेल युवा मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया।
2: And if we come to the business news today, benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2%, mirroring losses across global markets. The Sensex plunged 893 points to close at 76,201, while the Nifty shed 279 points to settle at 23,824. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped over 1%, while the small-cap 100 index lost 0.5%. Concerns over weak monsoon and its potential impact on economic growth further weighed on investor sentiment. And for more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए दोस्तों, अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था।

0: वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वायसराय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया।
1: दोस्तों, आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की। हिंदी सिने जगत में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे प्रतिभावान व्यक्ति हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सरोजनी नायडू के छोटे भाई, जिन्हें हिंदी फिल्मों के कई मशहूर गानों के लिए याद किया जाता है, कई गाने उन्होंने लिखे इसलिए और कुछ उन पर फिल्माए गए इसलिए। तो ऐसा ही एक गाना था फिल्म आशीर्वाद में, जिससे हम शुरुआत करते हैं, आपको याद आए। दरअसल मंच पर वो इसे कई बार गाते थे, लेकिन फिल्म में गाया था इसे अशोक कुमार ने, लेकिन लिखा था हरीन्द्रनाथ ने।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन।

और दोस्तों फिल्म बावर्ची में उन्होंने एक पुराने विचारों वाले, एक दकियानूसी लगने वाले, जबकि ऐसा था नहीं, एक ऐसे पात्र की भूमिका अदा की जो सबसे वरिष्ठ हैं घर में, और उन पर ये गाना फिल्माया गया था जिसे गा रहे थे पर्दे पर असरानी। आपको याद आएगा फिल्म बावर्ची से।

और दोस्तों फिल्म जूली का ये गाना जो अपने समय में बहुत मशहूर रहा और आज भी गुनगुनाते हैं, और इसकी अनोखी बात यह है कि हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल हुए बहुत कम ऐसे गीतों में से जो लिखे अंग्रेजी में गए थे, और इसे लिखने वाले हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ही थे। तो उन्हें आज हम अपने हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनका लिखा हुआ ये मशहूर गीत।

0: वॉइस।
1: मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोग नहीं।
2: मैं दूसरी बहुओं जैसी नहीं हूँ जी, गरीब घर की लड़की हूँ। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी?
2: मेरा गाना पसंद आएगा तो?
1: वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? गा सकोगी मेरे सामने?
3: This was a dialogue between Rehman and Meena Kumari from the famous film Saheb Bibi aur Gulam. And we have chosen another song from you, from the movie Choti Behen, in which Rehman had acted.

0: Merit, the highest honor awarded by FIFA.
1: और दोस्तों आज ही है जन्मदिन फिल्म अभिनेता राज बब्बर का, जिनका जन्म 23 जून 1952 को हुआ था उत्तर प्रदेश के टूंडला में, जो आगरा के नजदीक है। और राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के आप छात्र रहे। नई दिल्ली में ट्रेनिंग के बाद मुंबई चले गए और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपनी फिल्म करियर की उन्होंने शुरुआत की। बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक किस्म के रोल से उन्हें काफी चर्चा मिली और इसके बाद बीआर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का जैसे वो एक अहम हिस्सा ही बन गए थे। और दीपक पराशर और सलमा आगा के साथ फिल्म निकाह उनकी काफी मशहूर हुई। स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज में नजर आए और बहुत सी पंजाबी फिल्में भी की, बाद में राजनीति में भी वो गए और अभी भी सक्रिय हैं और गाए बगाए हमें फिल्मों में नजर आते हैं, तो उन्हें हम जन्मदिन की देते हैं हार्दिक शुभकामनाएं।
0: And today we also remember Nirmala Joshi, the sister, in fact, Sister Nirmala Joshi. It was in 1976 that Sister Nirmala Joshi started the contemplative branch of the Missionaries of Charity and remained at its head until 1997 when she was elected to succeed Mother Teresa as Superior General of the Institute. Her term as Superior General ended on 25th of March 2009 and she was succeeded by a German-born sister after that. She was an Indian religious sister who succeeded Nobel laureate Mother Teresa. And the award she was bestowed on was the Padma Vibhushan and also for her services to the nation.
1: दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए हमें यानी मुनीश शर्मा और अनुजा को परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन जरूर कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: अरोड़ा, आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहां मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहां उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए सभी लोग उनके

0: साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: ए वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी फ्रॉम गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ ऑनरेबल प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द पद्मा अवार्ड्स 2026 एट द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ दिस ईयर। द प्रेजिडेंट विल कन्फर 65 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण एंड 56 पद्मश्री। Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, and engineering, public affairs and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में। सभी को नमस्कार करते हुए,
1: वेल द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल बी ऑनरिंग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंडियंस फॉर देयर एग्जाम्पलरी वर्क इन वेरियस फील्ड्स। What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in a lifetime.
0: इंडीड, बिल्कुल सही कहा नितिश। यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता यह है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया, बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: दिस इज राइट। टॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। ही इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुंचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं
0: श्री ममूटी कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: क्लैड इज इन ए फॉर्मल बंद गला। Shri Mamuti is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and the patron for several
0: charitable initiatives. Shri Vellapalli Nateshan Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Nateshan Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Nateshan ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: एनसीजीटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाख लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहिजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and the Gulf. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren Marnopranth Lok Karya, unki patni Shrimati Rupi Soren.
1: Shibu Soren ke marnopranth ye award diya ja raha hai jo unki patni lengi aur mane rashtrapati niche utarte hue unko ye padak pradan karne ke liye पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक विशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
2: फॉर मिलियंस श्री सोरेन वॉज मोर देन ए पोलिटिकल लीडर, ही वॉज ए कस्टोडियन।

0: Institute of Memory, Resistance
1: Shrimati
0: and Hope.
1: Alka Yajnik, Kala, Parsh Gayan.
2: और अब नाम बुलाया गया है अलका याग्निक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
0: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Shrimati Yajnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
2: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
1: पद्म श्री श्री नूरुद्दीन अहमद कला निर्देशन।
0: Now we move on to Padma Shri awardees. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films and television. The works
2: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपने अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है।
1: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम कला मृदंगम।
2: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं, कर्नाटक संगीत की काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्तवत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
0: Shri Thiruvarar Bhaktavatsalam was rooted in Tanjore style. And
1: Dr. Krishnamurti Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
2: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
1: श्री ब्रिज लाल भट्ट समाज सेवा।
0: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in the bandgala, two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
1: श्री तरुण भट्टाचार्य कला संतूर।
2: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का जो प्रख्यात संतूर वादक है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
0: And credited for having created new Hindustani classical ragas, Rag Ganga, based on Swachh Ganga Abhiyan, and also having created
1: Shri Jyotish Devnath Kala Hatkarga Bunai.
2: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
0: बियॉन्ड हिज पर्सनल आर्टिस्ट्री, श्री देवनाथ हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज ए मेंटर एंड
1: डॉक्टर जोगेश देवरी कृषि।
2: जोगेश देवरी

0: किसान एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है, जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
1: एब्सोल्युटली, डॉक्टर देरी इज एरी सिल्क पायनियर क्रेडिटेड विद मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल एरी सिल्क वेयरिंग मेथड्स। He's a strong advocate for Airy Silk Ahimsa, a non-violent silk, viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he's wearing the Airy Silk.
2: Shri Bikleya Ladkeya Dinda Kala Lok Sangeet.
0: Agla naam, Shri Dinda, aap ek pratishthit adivasi lok sangeetkar hain aur बालगंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में संरक्षित करने में बताया है।
1: When in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
2: Dr. Amida Fernandez, चिकित्सा neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूरोनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूरोनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूरोनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। क्लैड इन अ ग्रीन साड़ी, शी इज proudly receiving this award from Honorable President
2: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: Dr. Prem Lal Gautam, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
1: डॉक्टर गौतम वॉज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ए डजन इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर, कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which were struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास

0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सुवा रिगपा संस्थान ले के संस्थापक निदेशक लद्दाख अमची सभा ले लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सुवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं। अत्यंत गौरव का पल।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
2: Shri Ashok Kumar Haldar is a noted Indian writer and social thinker from Malda district of West Bengal. In addition to books, Shri Haldar has authored approximately 3,000 articles published in leading newspapers of West Bengal and Tripura. He first walked up to the Prime Minister Shri Narendra Modi and is now walking slowly to receive his Padma Shri award.
0: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा लेते हैं श्री अशोक कुमार हल्दर।
1: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी देवनगिरी KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over 4 decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected
0: communities.
2: A proud moment for his family members who are all standing up and cheering.
1: Dr. Charan Hembram, Sahitya Evam Shiksha, Santhali.
0: Shri Charan Hembram एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने ओडिशा में संथाली भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
2: श्री हेमराम प्लेड ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर ACE. Rai Rangpur from 1992 to 2004.
1: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
2: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti visibility imaging system and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory equipments.
1: Shri T.T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, unke putra Shri Mukund Thatte.
0: Shri Jagannathan ko Marnoprant पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
2: As chairman of the TTK group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation,
1: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
0: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
2: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड पल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.

0: प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: आईआईटी मद्रास चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in
0: international Professor Mangala Kapoor, Sahitya Evam Shiksha, Shastriya Sangeet.
1: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका, संगीतज्ञ, शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल, लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
2: Professor Kapoor has made significant contributions to Indian classical music through performance and research. She is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
1: Professor Mangala Kapoor, माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
0: डॉक्टर अशोक खाड़े, व्यापार एवं उद्योग।
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई,
0: साहित्य एवं शिक्षा,
2: वर्क इंस्ट्रक्टर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
1: और अब अगला नाम खोखलोवा। डॉक्टर खोखलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग, एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
2: At present, Dr. Khokhlova is teaching different linguistic courses at Moscow
0: Dr.
2: State University,
0: Prabhakar,
2: which are very popular among students, Hindi
0: Kore,
2: at BA
0: Sahitya
2: and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
2: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
0: श्रीमती पखिला लेक्थेपी, कला करबी गीत।
1: श्रीमती पखिला लेक्थेपी असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
2: श्रीमती लेक्थेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स। शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976। अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए।
0: श्री रामा रेड्डी मामिदी, मरणोपरांत, सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी।
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
2: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is

0: श्री रा वेसु मणि सिविल सेवा।
1: श्री आरवीएस मणि एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं। श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
2: श्री मणि हैज रिटन 5 बुक्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हैज वर्कड एज अ सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन एपॉलिटिकल मैनर। Credits were given to him for handling several sensitive cases without falling prey to any vested interest. Shrimati Kala Mandalam Vimla Menon Kala Mohini Attam.
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो उसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
2: श्रीमती मेनन From the young age, recognized the power of art as a nation's vital soft power and developed her journey to using classical dance as a medium for peace, unity, inclusion, and human development.

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी अपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: Shri Mohan Nagar, Samaj Seva.
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटुक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Dr. Mathura River
0: catchment area. Dr. Punyamurti Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punyamurti Nateshan, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations
0: Shri
2: such as
0: Sarat
2: Department
0: Kumar
2: of Animal Husbandry
0: Patra,
2: and Dairying.
0: Kala Ikat Bunai.
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हरकरघर शिल्पकार हैं, जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
2: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: श्री श्रीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक के भीष्म पितामह के रूप में

0: मानव सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
1: बॉर्न ऑन 7th July 1927, श्री पात्रा हेल्स फ्रॉम ए पुअर रूरल फैमिली एंड एज पर फैमिली ट्रेडिशन एंड कल्चर ही इज इंक्लाइंड टू वैष्णविज्म। श्री पात्रा फ्रॉम द एज ऑफ 7 लर्नड सखी नटा, सेड टू बी प्रीकर्सर ऑफ क्लासिकल ओडिशी डांस वेयर मेल बॉयज एक्ट एज फीमेल सखी फ्रॉम गुरु श्री नरसिंह प्रधान।
2: गुरु संग्यु संग पोंगनर कला लोक कला।
0: गुरु पोंगनर नागा वादिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है।
2: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद कला अभिनय।
1: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। फॉर ओवर 4 decades, स्टार्टिंग विद हिज डेब्यू इन 1977, श्री गद्दे बाबू ग्रेस्ड मोर देन 286 फिल्म्स अक्रॉस 6 लैंग्वेजेस, इवन स्टेपिंग इनटू इंटरनेशनल वाटर्स। हिज जीनियस लाइज इन हिज स्पेशल टच, वर्सटाइल रोल्स इन फैमिली स्टोरीज, सोशल मैसेजेस एंड कॉमेडी दैट हिट होम ब्लेंडेड विद स्किल्स लाइक माइंड मिमिक्री।
0: वो सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए। और पर्दे के पीछे नम्र मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
2: सुश्री सविता पूनिया खेल हॉकी।
1: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
0: बिल्कुल, भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया।
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ।
0: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
1: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
2: Shri Bhagwan Das Raikwar Marnoparant Khel Bundeli Martial Art, unki putra Shri Rajkumar Raikwar.
0: Agla puraskar bhi Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
1: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
2: प्रोफेसर के रामस्वामी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी करपगम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
1: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
2: Shri Madhavan Ranganathan Kala Abhinay.
0: और अब नाम पुकारा गया श्री माधवन रंगनाथन का और आप सुन पाएंगे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट आप तक भी पहुंच रही होगी और माधवन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनका अभिवादन

0: सत्कार करते हुए नमस्कार की मुद्रा में और अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रही हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है। एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता निर्माता निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
1: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत।
2: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री आर एमिनेंट कर्नाटक म्यूजिशियंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज अ परफॉर्मिंग ड्यूओ फॉर नियरली फोर डेकेड्स।
0: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाईनमा मणि पुरस्कार, समागान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों
1: श्रीमती गायत्री
0: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
2: श्रीमती गायत्री अलॉन्ग विद श्रीमती रंजनी हैव रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूडिंग द कलाई ममामी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु।
1: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला नाट्य कला।
0: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी एक कलाकार, एक वैज्ञानिक और एक परोपकारी का अनूठा मिश्रण है। डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में MSc की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में PhD की।
2: Dr. Rastogi has been working in the media and entertainment industry for 64 years, having staged around 1,000 shows of 100 plays all over the country. He staged his 100th play, Beyond the Curtain, in December 2025.
1: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Vigyan Evam Engineering.
0: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ राय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
2: बियॉन्ड एकेडमिया ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल वर्कर पर्टिकुलरली फॉर द एफर्ट्स इन अपलिफ्टिंग द कॉमन पीपल। ही हैज डोनेटेड ऑन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Lennox Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंटेरोलाइटल रोगों के और कैंसर के लिए अपना
0: खेल क्रिकेट।
2: द मैन इन ब्लू एंड ऑल्सो इन व्हाइट्स व्हेन ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट टुडे कैन बी सीन वेयरिंग ए फॉर्मल ब्लैक बंद गला टू पीस सूट वॉकिंग अप टू द प्रेसिडेंट टू रिसीव पद्मश्री।
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए

0: राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
1: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिंधु स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: श्री रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवती।
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था। आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है। मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे।
2: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025। ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ। ही कंटेस्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1980 एंड 1985 बट डिड नॉट विन। Later, he won the election as a member of the block panchayat Biladi in 1995 and again in 2020.
1: Shri Raghupat Singh ji ki dharmpatni ye samman grahan karte
0: hain. Shri Khemraj Sundaryal, kala, hathkargha bunai.
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरयाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
2: श्री सुंदरयाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स। Also in 1980, he introduced polyester yarn in handloom under Petrofil project.
0: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉ. बुधरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
2: डॉ. बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
0: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
2: डॉ. कुमारस्वामी थंगराज इज द CSIR भटनगर फेलो एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद।
0: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू।
1: श्री रबीलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए।
2: Shri Tudu was awarded with Sahitya Academy Award in 2015 for his play Parsi Khate in the Santhali language category. In addition to his national recognition, he received the Banga Bhushan Award from the Government of West Bengal in 2022, honoring his significant contribution to Santhali literature and culture.
0: Shri Naresh Chandra Dev Verma, साहित्य एवं शिक्षा।
1: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य, भाषा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
2: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.
0: श्री शशि शेखर वेम्पटी साहित्य एवं शिक्षा,
1: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
2: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017

0: they are wearing those medals on their chest.
1: बिल्कुल,
0: what a proud moment.
1: गर्व के पल होते हैं नितिश ये, और ताज जिंदगी ये मेमोरीज रहती हैं. और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंतव्य मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए.
0: And of course, the recipients will now stay put for a ceremonial photograph with Honorable President of India.
1: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं. सभागार का वातावरण गर्व, प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है. आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ. यह समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है. आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई. आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण. तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीणा. ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव. कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार. और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ. नमस्कार.
0: नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण दे रहे थे शालिनी मित्तल और नीतीश अरोड़ा.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद नमहार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सुबेदार बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: What a wonderful evening for the recipients. When they came to this hall, they were standing tall, but now they

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz शाम के 6:10 और 14 सेकंड और ये वक्त है आपके प्रिय प्रोग्राम सदाबहार गीतों का।

जिंदगी के सफर में जब भूलने भुलाने की बात चली है तो जिंदगी जीने के लिए कभी कुछ भूल जाना बेहतर होता है तो कभी कुछ याद रखना। कहते हैं इन रास्तों में कि जिंदगी के रास्ते खत्म नहीं होते, मंजिलें वही हैं जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गाने।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ स्टूडियो में आज चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 900 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,850. एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन नेगेटिव टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट इज मेकिंग एडवांस प्रेपरेशन टू डील विद पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ अ वीक मॉनसून कॉज्ड बाय एल नीनो, सेज यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट, सेंसेक्स लगभग 900 अंक लौट का, निफ्टी 23,850 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. बिकवाली के दबाव में एशिया के प्रमुख शेयर बाजार भी घाटे में रहे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अल नीनो के प्रभाव से मॉनसून की वर्षा कम रहने की आशंका के प्रभावों से बचने के लिए सरकार अग्रिम तैयारियां कर रही है.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए अब शुरुआत करें घरेलू बाजार से. घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही, प्रमुख सूचकांक 1.2% घाटे के साथ बंद हुए. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले गिरावट के संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों पर भी बिकवाल हावी दिखे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 893 अंक घटकर 76,201 पर बंद हुआ. उधर नेशनल

0: स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 279 अंक कम होकर 23,824 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर आपको लिए चले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 इंडेक्स 1% से अधिक घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नुकसान के साथ बंद हुआ।
1: Benchmark domestic equity indices declined sharply at 1.2% today, mirroring losses across global markets. Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. Meanwhile, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index slipped over 1%, while the small-cap 100 index lost 0.5%. Concerns over a weak monsoon and its potential impact on economic growth further weighed on investor sentiment. Earlier markets opened on a subdued note and traded in positive territory for some time. However, sentiment weakened in the second half of the session, pushing indices into negative territory and leading to a sharp sell-off by the close amid Nifty futures and options expiry.
0: नजर डालें सेंसेक्स फैक्ट पर तो 30 में से 26 कंपनियों को आज नुकसान उठाना पड़ा है। घाटा उठाने वालों में सबसे आगे रही कंपनी इन्फोसिस, जिसके शेयर 3.4% लुढ़क गए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 3.2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2.7% का घाटा उठाना पड़ा। उधर लाभ कमाने वाली चुनिंदा कंपनियों में पावर ग्रिड के शेयर 0.8% लाभ में रहे। एक्सिस बैंक को 0.3% का मुनाफा हुआ और सन फार्मा के शेयर 0.2% बढ़त के साथ बंद हुए।
1: Among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all sectors ended in negative zone except healthcare, which rose 0.6%. Among the key decliners, metal tumbled 3%, IT fell by 2.2%, and PSU banks lost 2.1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,794 companies declined, 1,496 companies advanced, and 157 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर हुआ, 94.74 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.2 पर कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, बाजार में पिछले कुछ सत्रों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, कारोबारी सप्ताह की शुरुआत भी ठीक ठाक रही, लेकिन आज बाजार पर फिर से बिकवाल हावी हो गए, क्या प्रमुख कारण रहे? केवल भारत ही नहीं बल्कि एशियाई बाजारों में भी हमने नरमी देखी, यूरोप से भी कमजोर संकेत आ रहे हैं, क्या प्रमुख कारण?
2: पूरे संसार में आज उथल पुथल का माहौल रहा
0: जी,
2: और पैराडॉक्सिकली मतलब ये एक विडंबना है कि उस दिन हुआ जब उम्मीद ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है उससे और राहत मिलेगी, पेट्रोल प्राइसेस काफी कम हुए हैं
0: जी,
2: और ये उम्मीद की जा रही थी। सडनली एक सुबह एशिया मार्केट जब खुली तो जो सबसे ज्यादा धड़ाम से गिरा वो साउथ कोरिया का इंडेक्स था, तकरीबन 10%, एक दिन में 10% बहुत बड़ा अपहीवल हो जाता है, उससे पूरा सेंटीमेंट बिगड़ गया ऑल ओवर। और जैसे अर्जुन जी ने अपने रीड आउट में कहा, आईटी शेयर्स जो थे उन्होंने मैक्सिमम ब्रंट फेस किया, इसका मेटल्स भी ब्रंट फेस किया। तो जो एआई को लेके एक फ्रेंजी चल रही थी पीछे दिनों में, तो कहीं ना कहीं उसका रियलिटी चेक नजर आया कि भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हो चुका है या पाइपलाइन में है इन्वेस्टमेंट। तो उसका एक रियलिटी चेक जब हुआ तो एक अंदेशा होने लगा इन्वेस्टर्स को, ये सब करते सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा आज। और अभी यूएस फ्यूचर भी अच्छे नहीं दिख रहे, यूरोप भी खराब है, एशिया तो आपको मैंने जिक्र किया साउथ कोरिया का
0: जी जी जी।
2: तो ये इन सब के चलते हम भी इस लपेटे में आए, लेकिन हमारा नुकसान थोड़ा कम हुआ है बिकॉज हम गिरे हैं कोई तकरीबन 1.6%, और बाकी मार्केट्स तो ब्लीड कर रहे थे।
0: हम एशिया की चर्चा भी श्रोताओं कर लेते हैं, एशियाई बाजार पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट है। कल रिकॉर्ड स्तर पर कई सूचकांक पहुंचे थे, जबकि आज बड़ी गिरावट, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ प्रकाश जी ने बताया कि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10% लुढ़क गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हुआ, 20 मिनट तक स्थायी रूप से कारोबार निलंबित भी रखा गया। उधर निक्केई 225 सूचकांक में 3.5% की गिरावट हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% घाट घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.4% की गिरावट हुई। ताइवान का ताइएक्स भी 1.3% नीचे आ गया। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बंद हुआ।

0: यूरोप के प्रमुख सूचकांक यानी शेयर बाजार भी समाचार तैयार किए जाने तक घाटे में चलते दिख रहे थे। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.5%, फ्रांस का कैक 40 0.6% और जर्मनी का डैक्स 0.9% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, एक बार फिर लौटे बाजार में, जैसा कि आपने कहा कि ईरान और अमेरिका, इसके बीच में शांति की खबरें पूरी दुनिया में अच्छे संकेत देंगी और वो दिखे संकेत भी, क्योंकि एशियाई बाजारों में कल की अच्छी खासी बढ़ा,
1: नहीं पेट्रोल में बड़ी करेक्शन हुई है, बड़े अच्छा वो है।
0: उसके बावजूद आज अचानक कुछ न कुछ तो वजह रहा होगा कि हर जगह पैनिक बटन जैसे दब गया हो और सबसे अधिक प्रभावित एशियाई बाजार दिख रहे हैं, अपने यहाँ भी बाजार प्रभावित हुए।
1: हुआ क्या कि पिछले हफ्ते, अब इनफैक्ट कल आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसके जब रिजल्ट्स आए और उसके आउटलुक, आईटी आउटलुक देखा ग्लोबल, तो उसमें एक अंदेशा आया कि जो आईटी स्पेंड होता है कंपनियों का वो कम होने वाला है। और अब पीछे जो एक फ्रेज बोलते हैं उसको MAG 7 बोलते हैं, मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज में वो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, है तो शेयर होल्डर का पैसा ना
0: जी, जी।
1: तो वो जो पैसा कर चुके हैं तो लोगों के मन में अंदेशा आने लगा और ट्रिगर सा हो गया। एक्सेंचर कंपनी है वहां की, तो उनके रिजल्ट्स आए थे और उससे लोगों को एक अंदेशा आने लगा कि आईटी स्पेंड जो है इसकी कहीं ना कहीं तो लिमिट होनी चाहिए ना, हम अंधाधुंध तो पैसे नहीं लगा सकते। तो ऐसा अभी कोई डिसीशन नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है एआई का, ज्यूरी इज स्टिल आउट, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एआई इज गोइंग टू बी हियर, वो हमारे साथ रहने वाली है, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बीच बीच में रियलिटी चेक, इस तरह के जर्क्स आते रहेंगे, तैयार रहना चाहिए
2: जी। प्रकाश चावला जी, टॉकिंग अबाउट द आईटी इंडेक्स व्हिच फेल बाय 2.2% इन ट्रेड टुडे एंड इट्स फॉलोइंग द ट्रेंड सेट बाय नैसडैक फ्यूचर्स व्हिच हैज गॉन डाउन बाय 3%। वी हैव प्रोमिनेंट आईटी स्टॉक्स which have gone down by as much as 9% in the US itself. And right now, the US stock market will also open and we'll see our results as well. But conversely, in our market today, in the cash market, DIIs were net buyers to the tune of 680 crore rupees. FIIs, FPIs were marginally net buyers to the tune of almost 18 crore rupees. So there have been fence sitting. The sell-off has been carried out by whom? Retail investors today, or is it a combination of everyone?
1: No, it's a combination. You can't really pinpoint. But what have happened is we were bleeding less, far less than some other Asian market, because we didn't have this kind of a frenzy around AI. Today's it's all AI bleeding, AI-led bleeding. So this frenzy was not around Indian market anyways. The frenzy was around NASDAQ and Korean and to some extent Taiwan. So we were spared this brunt today because we were not participating in a frenzied kind of a rally which was witnessed in the last few months. That's the reason.
2: What is the futures and options market telling you today? It was the Nifty futures and options expiry as well. Somehow derivatives and the cash market, they also move in tandem. How do you see next month based on what's happened today?
1: Well, it's very difficult, especially this trading, day trading, futures and options trading. They are a function of data. And when you have a big event like what happened today, the technical data also goes for a, it doesn't really tell you anything. What you are suggesting, the data expiry, it all, it's fine if the things are in a going in a smooth manner. Suddenly a big event, then technical analysts also find it very difficult to see what kind of outlook is there.
0: यहां पर प्रकाश जी, फिर यदि आशंका के बादल संदेह के रूप में, क्या बड़े स्तर पर जो सटोरी हैं वो दुनिया के बाजार पर हावे दिख रहे हैं, यानी मैग सेवन के नाम पर, या कह लें कि जो एआई का एक अंधाधुंध हर दिशा से निवेश उसी ओर बढ़ता नजर आ रहा था, उसका बुलबुला फूटता संकेत तो नहीं दे रहा, क्या कहना है?
1: शेयर होल्डर्स, बिग जो मैग सेवन के शेयर होल्डर्स और सटोरी है जिनका आपने जिक्र किया
0: जी,
1: इन दोनों ने फ्रेंजी मिलकर बनाई एआई के, अब इनको अपने आप ही शक होने लगा, भाई हम जो कर रहे हैं कहीं अपने हम हाथ जला तो नहीं बैठेंगे, तो ये क्योंकि

0: बिग प्लेयर्स हैं
1: जी जी,
0: तो इनके लपेटे में हम सब आ जाते हैं। तो जब इनको अपने आप पे संदेह होने लगा तो इन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू किया और आप उसका रिजल्ट देखिए आज क्या हुआ।
1: सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टैक्टिक्स नाउ ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट? डू यू सी देम शॉर्ट कवरिंग टुमारो because of valuations that have come down? We've seen metals go down by 3%, IT I mentioned 2.2%, PSU banks fell by 2.1%. Are we likely to see a buy-in to the market tomorrow?
0: Very difficult to say this because if you see Nasdaq futures right now, they are in the red. Okay, they are also bleeding. So it's very difficult to say how the market opens tomorrow, how the data pans out. But what has happened is that we were looking, Indian market was looking more or less stable in the past few days. And we found ourselves in a no risk zone, mind you, low beta. Because what had happened was that Indian markets were trading in a band of Nifty 23 around 24,000, and then within 500 band we were trading. So there was no risk of crash. Unless this, until you had this kind of event which has taken place. So in the face of this event, although I am feeling that AI, the way frenzy panned out, and again, people are saying, no, it's not all gone. There'll be some reality check and people will have a rational kind of thinking.
1: So when you say low beta, it basically means low volatility.
0: Low risk.
1: I understand what you're saying. Is there any correlation to the currency market? The US currency has become stronger. It's crossed 100. It's 101 right now. Do you see any correlation of a strong US currency and the trend in the US market with what's happening in India?
0: Well, the Indian market, Indian financial system does get impacted by the US interest rates and the currency. So obviously, one of the reasons for our market not to really take a bounce is the US interest rate. We are keeping an eye on the US, the trajectory of the US interest rates. That's important for us.
2: प्रकाश जी, कुछ तथ्य बड़े रोचक और कह लें अच्छे निकल के आ रहे हैं अपने बाजार के लिए, विशेष रूप से जब दुनिया भर में क्राइसिस दिख रही है, दुनिया भर के बाजार नीचे आते दिख रहे हैं, वहां भारतीय बाजार अपेक्षाकृत अपनी थोड़ी मजबूती दिखा रहा। तो इसमें क्या मुख्य रूप से योगदान हमारे अपने जो निवेशक हैं, जो नए निवेशक हैं या जो हमारे संस्थागत निवेशक हैं, उनका योगदान है, और क्या हम बाहरी झटकों का प्रहार बेहतर तरीके से अब संभालने में सक्षम हो गए अपने बाजार और अपने
0: निवेश? इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा और बड़ी इंटरेस्टिंग से इसकी सिचुएशन है। हमारे जो घरेलू निवेशक हैं उसमें दो तरह के, एक तो म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे देता है जो आगे इन्वेस्ट करता है। तो DII जिनको बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो धड़ल्ले से FII कई महीनों से बेचे जा रहा है और हम लोग धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने मार्केट को संभाल के रखा
1: जी,
0: रेजिलियंस दिखाई, मार्केट को डेप्थ दी। अब क्या है कि एक नया तरह का सवाल आ रहा है कि भाई हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम FIIs को एग्जिट रूट दे रहे
1: जी,
0: भाई बेची आइए, उनको बेचने की हम एक एग्जिट रूट दे रहे हैं। ये सारा चर्न चल रहा है, इंटरेस्टिंग है, ये सही बात है कि हमारी मार्केट स्टेबल है अभी रिलेटिव टू अदर मार्केट्स, स्टेबल है क्योंकि ज्यादा अब यहां कोई उथल पुथल का स्कोप लगता नहीं। लेकिन अगर कुछ विश्व स्तर पर कुछ ऐसी चीज हो गई तो फिर अपने आप को हम उस चीज से टोटली अनछुआ नहीं रख सकते।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: Well, let's now move on to the US stock market. Most US equities ended lower yesterday, weighed down by a weakness in technology stocks. Among the major stock market indices, the Nasdaq Composite Index plunged 1.3%, while the S&P 500 declined 0.4%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average posted a modest gain of 0.3%. Investors are now closely monitoring the upcoming personal consumption expenditures data, a key indicator that could influence the Fed Reserve's future monetary policy decisions. We have a new Fed chair in the US right now, has left the Fed rate unchanged. But what we have seen in the markets right now, in the stock market indices in the US, is that the tech stocks have taken a huge hit. There's been an impact definitely on the US market. The Dow Jones Industrial Average, in fact, has posted a modest gain of 0.3%. Do you see a shift away from technology now?

0: in terms of buy-in?
1: Well, in the US, the interest rate trajectory prior to the US-Iran deal was on the upside. The interest rates are expected, even today, it is expected that the US interest rate might be there for upward revision. People are expecting at least one rate hike this year. But I am expecting that because of this US-Iran deal, the oil prices have corrected a lot. They are trading below $80 per barrel. And if they stabilize around between 75 to 80, then even in the US, the inflationary pressure might come down. So let's see how it pans out, because the US-Iran deal is right now in an interim kind of a stage. So let's see how it works, how it goes from here.
2: Prakash ji, badi achhi baat aapne baat kahi. Yahan par ye hum samajhna chahenge ki Bharat ke liye jo ye samjhauta dono pakshon ke beech mein hua hai, woh kis roop mein pan out karega, hamari jo urja aavashyaktaen hain, unko sambhalne mein, unko behtar karne mein ye samjhauta kis roop mein
1: Bharat ki badi achhi baat ye hai kyunki hamara energy dependence kafi import pe hai.
2: Ji.
1: Aur jaise energy prices kam hota hai, hamare liye badi rahat ki baat hoti hai. हमारी इकोनॉमी के लिए हमारे मैक्रोज बड़े इम्प्रूव होते हैं उससे. हमारे इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा, हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट बजट पे बड़े पड़ेगा, आम लोगों को महंगाई से जो परेशानी होती है उससे राहत मिलेगी. तो हमारे लिए बड़ा अहम है कि ये डील सक्सेसफुल हो. और हमारे मिडिल ईस्ट में हमारा बहुत स्टेक, हमारा डायस्पोरा है.
2: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: हमारे NRIs वहां काम करते हैं, हम रेमिटेंस वहां से लेते हैं. वहां शांति होगी तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है.
0: देयर इज ऑल्सो अ 60-day विंडो विच इज अलाउिंग चाइना एंड अदर कंट्रीज टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस वेवर बाय द US ऑन इरानियन ऑयल राइट नाउ. देयर सीम्स टू बी अ विंडफॉल revenue for Iran to the tune of inventory which is still floating in the Strait of Hormuz, 67 million barrels which is still there. Do you see these things improving the South Asian economies, because they're reacting very sharply to what's coming out from the US?
1: Well, what has happened is very interesting. Since 1979, it is for the first time that Iran will be free from any sanctions. Mind you, in the 60 days ahead, the deal will take a final shape. Let's hope it takes a final shape. Imagine, Iran, mind you, is a very rich country, has rich reserves of crude oil.
2: Ji.
1: So if all the waivers go on Iran, you will find that there will be a glut of supply, crude oil supply in the world market. And we might see a kind of a glut situation, and it goes to the benefit of Indian economy and South Asia economy and South Asian economy as well.
0: So central banks all across will take a decision to cut interest rates. Right now Fed rate is 3.5 to 3.75%. Do you see our monetary policy also reacting to that?
1: Well, our central banks all over the world will have to keep a close eye on the developments in the Middle East, because the difficult part of the deal is Israel.
2: Yes.
1: And how the relation, how the Lebanon-Israel thing pans out, very critical. Let's hope a breakthrough is achieved on that front as well.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि देश में अब तक लगभग 43% वर्षा कम हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है.
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है. और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है. और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे. 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने

0: की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसे फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और ये कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? अल नीनो अब साफ दिख रहा है, मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे में क्या हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं बन जाती हैं, जहां सरकार काम कर भी रही है और किसानों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए?
2: जैसे मंत्री जी ने कहा, ये जो एफर्ट्स हैं ग्राउंड लेवल पे युद्ध स्तर तक लाने पड़ेंगे
1: जी,
2: किसानों के साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी
1: जी।
2: क्योंकि ये जो संकट है ना एल नीनो का, ये काफी गंभीर है और अच्छी बात है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी को ग्राउंड धरातल तक लाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है
1: जी जी।
2: जैसे आपने जिक्र किया कि दालों की तरफ आप
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: उधर आप जो खरीफ
1: दलहन तिलहन और खरीफ फसल,
2: हाँ जी, तो उस तरफ दीजिए, उनको हैंड होल्डिंग देखिए और मॉनिटरिंग चाहिए, वीक ऑन वीक बेसिस, मंथ ऑन मंथ बेसिस, तभी जाके बात बनेगी।
1: आइए आगे बढ़े। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच गोर ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी।
3: In more news, Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, today said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. Dr. Lahiri said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. The Vice Chairperson added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, he said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world. The report released today gives an analysis of India's role in global trade, primarily focus on pharmaceutical trade. Just a brief on pharmaceuticals. You have the APIs and you also have other ingredients and materials which play a very critical role. We import it from China. How are we going to bring down a dependence on China for the pharma industry?
2: Well, that's a long haul. You know, you can't do it in 1 year, 2 years. It takes at least 5 years. You have to, because the entire supply chain, the entire infrastructure, because API is a very complicated kind of complex situation to reduce dependence. So for now, we have to import anyways. But a move in that direction is a welcome move. We need to really reduce our dependence because that's very critical for us.
3: Moving on to the oil market, global crude oil prices extended their decline today amid signs that oil shipments through the Strait of Hormuz are returning to normal. Brent crude was trading 0.9% down at $77.24 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 0.8% down at $73.27 per barrel at the time of the last report. While we've been talking about lifting sanctions on Iran, and we have discussed it as well, how do you see Russia also playing into this? Because the Russia-Ukraine war had come down, even though there are reports now coming in that there is attacks from Ukraine into Russia. How do you see that playing also on the oil prices?
2: As I said earlier, a very interesting situation and to benefit of India. We are going to see a glut in the global oil supply and it suits us fine, mind you. So whether it's Russia, whether it's Iran, because oil supply, because of sanctions, if sanctions are eased on Iran, then sanctions relating to Ukraine war might be there in Russia, but we'll have more than made up through Iran.
3: Plus, US also wants to supply us.
2: They are almost desperate to sell it to us.
3: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी की चमक समाचार तैयार की जा

0: तक थोड़ी फीकी दिख रही थी। अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% मूल्य कम होकर 1,46,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 2.9% नुकसान के साथ 2,27,574 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। एमसीएक्स में भी सोना कह लें कमजोर दिख रहा, चांदी भी। आने वाले दिनों में सोना किस रूप में बढ़ता दिख रहा, जबकि दुनिया में तनाव घटने की अच्छी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में सोने की चमक किस दिशा में जाएगी?
1: अभी जो सोना है ना, वो अमेरिका डॉलर जो है, अमेरिकन डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी है ना, तो वो ट्रेड ऑफ चलता है, क्योंकि डॉलर मजबूत है, सोना थोड़ा नीचे चलता है, तो ये आपस में कश्मकश चलती रहेगी। उसी के चलते ये अभी आप देख रहे हैं, तो ये सारा डिपेंड करता है कि डॉलर कैसे बिहेव करता है, ये कैसे सिचुएशन पैन आउट होती है, सारी चीजें उस पर फर्क पड़ता है।
2: प्लस बुलियन इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट विद सैंक्शंस लूमिंग ऑन ईरान एंड रशिया। नाउ दैट दे हैव बीन लिफ्टेड, डू यू सी फर्दर रिडक्शन इन द बुलियन मार्केट प्राइसेस?
1: वेल, सेंट्रल

0: indices end in the negative territory, and the government is making advanced preparations to deal with possible impact of a weak monsoon caused by El Nino, says Union Minister Shivraj Singh Chauhan. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया

0: also secured a silver medal in the men's 10-meter air pistol junior team event, where the trio of Shivan Narwal, Sandeep Bishnoi and Chirag Sharma combined to deliver a strong performance and finish on the podium. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze medals. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: Surkhiyon mein.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
4: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
3: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोशियारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मेलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
1: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
5: गांव इरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
5: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
3: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार राबीलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
6: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
7: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा

0: का स्वीकृति मिला है। ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
1: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए हैं।
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: भुजबाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
5: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
2: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
6: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
7: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
6: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
7: जो हमारी परंपरागत किस्में थीं अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
6: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
7: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
2: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
8: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में

यहाँ ये सुरीली सी जो डगर है, इसका नाम आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 7:25 और 40 सेकंड और ये वक्त हमारे सभी सुधी श्रोता जानते हैं किस प्रोग्राम का है। जी हाँ, ये प्रोग्राम है सांझ छले।

है जिसका ये गीत आपने सुना है। देवदा फिल्म से इस गीत को आज तक मैंने कभी किसी प्रोग्राम में प्ले नहीं किया। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन देवदा फिल्म में जो संजीव कुमार पर अभिनीत गीत है चल बैठे चर्च के पीछे, वही गीत ऐसा दिमाग पर छाया हुआ था। और होता भी है ना कई बार कि बहुत सारी इन चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कई बार आपकी नज़रों से ओझल हो जाती है या छुपी रह जाती है। कुछ ऐसा ही इस गीत के साथ भी हुआ। इतना मशहूर ये गीत है, लेकिन चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ थी और संगीत आर डी बर्मन का था। प्रोग्राम साल चले और वक्त 7:30।

1968 में आई फिल्म साथी का ये गीत था मेरा प्यार भी तू है। इस फिल्म को जब जब मैं देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म है, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकते। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जब आप एक फिल्म को देखने लगते हैं तो लगता है कि ये फिल्म भी कुछ कम नहीं है, और कहते हैं कि कंपैरिजन जो है ना वो ठीक ऐसा ही हो जाता है। फूलों में आप कंपैरिजन कहाँ कर सकते हैं, चमेली की अपनी खुशबू है, गुलाब की अपनी खुशबू है, और किसी फूल अलग फूल की अलग खुशबू है। ठीक ऐसा ही होता है जब आप किसी कलाकार के बारे में, किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं। और कई बार मैंने इंटरव्यू में भी सुना है, अगर किसी अदाकार से आप या अदाकार से आप किसी हीरो से हीरोइन से ये पूछें कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपने की, तो वो बता नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी तमाम फिल्में होती हैं और हर फिल्म की अपनी खूबसूरती होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं और अभी जो गीत आपने सुना साथी फिल्म से था, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: शंकर जयकिशन, मुकेश और राज कपूर, ये एक ऐसी जोड़ी हुआ करती थी जिन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत फिल्में दी। और जिस फिल्म का गीत आपने सुना, यानी संगम 1964 में आई थी, और इस फिल्म में भी इसी जोड़ी ने अपना कमाल दिखाया था। और हम सभी जानते हैं कि संगम एक बहुत ही कालजयी और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
3: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
4: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
4: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 1964 में आई फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सांझ ढले प्रोग्राम यही होता है संपन्न। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। पहली जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। महापौर प्रवेश वाही ने आगामी मॉनसून की तैयारियों के लिए अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट कर दिया है जारी। और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
2: ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक मौजूद सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतिम रूप दी गई दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि पहले पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था, जिसकी सीमा अब बढ़ा दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से लाखों परिवारों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन आवासों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और वंचित परिवारों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बात की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में शासन में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन प्रक्रिया केंद्रित मॉडल से परिणाम उन्मुख हुआ है। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं अमीशा।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
5: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी है।
6: नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, ये सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अलनीलों के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
6: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आगामी मॉनसून सीजन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ बनाना था, साथ ही मॉनसून के दौरान नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इस दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित जल भराव से संबंधित

0: अंतर विभागीय मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे नालों की गाद निकासी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि मॉनसून के दौरान प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी पंप, मोटर, डीवाटरिंग उपकरण तथा अन्य आपातकालीन मशीनरी समेत सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह तैयार और कार्यशील अवस्था में रखा जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में स्टॉप डायरिया अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को ओआरएस के पैकेट और जिंक की गोलियां भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को डायरिया से होने वाली बीमारियों और मौतों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह अभियान आगामी 31 जुलाई तक पूरे राजधानी में चलाया जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नव निर्मित मॉडल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें एलोपैथी, आयुष, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धति को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भकालीन मधुमेह और गर्भव्यवस्था तथा प्रसवोत्तर सेप्सिस के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की तथा क्लिनिकल एल्गोरिदम का विमोचन भी किया। नए क्लिनिक एल्गोरिदम स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे और डॉक्टरों, नर्सों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भव्यवस्था के दौरान मधुमेह, संक्रमण और सेप्सिस जैसे उच्च जोखिम वाली स्थितियों की समय पर पहचान और प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, पोषण, समय पर उपचार और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नवजीवन विहार स्थित रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकेंद्रीकृत खाद निर्माण इकाइयों, स्रोत स्तर पर कचरा पृथककरण व्यवस्था और स्थानीय वर्षा जल संचयन प्रणाली का भी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यह क्षेत्र राजधानी में जीरो वेस्ट कॉलोनी के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि समुदाय के नेतृत्व में हुआ यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ और वेस्ट टू वेल्थ पहल के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों के प्रयासों की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित था। दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद धूल भरी आंधियों के साथ तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के ना रोंग बंदरगाह पहुंच गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार की समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और समयबद्ध तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम का जो है ये समय वो है मधुरिमा। और मधुरिमा प्रोग्राम को हमें सभी हमारे सुधी श्रोता जानते हैं कि वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे गीत सुनवाते हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं और साथ ही किसी एक राग की हम बात करते हैं। और आज जिस राग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो राग है राग हिंडोला।

राग हिंडोल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत प्राचीन और मधुर और उत्साहवर्धक राग है। वसंत ऋतु के विशेष रूप से जुड़ा हुआ यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसे गाने का जो सबसे मुफीद समय है वो दिन का प्रथम प्रहर माना जाता है।

कल्याण थाट से उत्पन्न हिडोल जो राग है उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसकी जाति ओडव ओडव है, आरोह अवरोह दोनों में ही इसके पांच पांच स्वर लगते हैं। वादी स्वर इसका दैवत है, संवादी स्वर इसका गांधार है, वर्जित स्वर इसमें ऋषभ रे और पंचम्पा है। इसमें मध्यम म तीव्र लगता है और शेष सभी स्वर शुद्ध होते हैं। अवरोह में निषाद नी थोड़ा अल्प प्रयोग किया जाता है। आरोह इसका सा ग म धी नी ध सा और अवरोह है सानिध म ग म ग सा ध सा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

राग हिंडोल का अर्थ है झूलना, जो इसकी संगीतमय चाल में झूलते हुए भाव को दर्शाता है। ये एक उत्तरांग प्रधान राग है जिसमें सभी स्वर ऊंचे और चमकदार लगते हैं। इसे मुख्य रूप से वसंत ऋतु के गीतों और होली की बंदिशों में बखूबी गाया और बजाया जाता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम मधुरिमा में आज हमने बात की राग हिंडोल पर।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे पास है हर मैच का ताजा अपडेट और वो सब कुछ अधिक जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अंक, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से और इंग्लैंड का मुकाबला घाना से होगा। अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे नॉकआउट राउंड में पहुंचे। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत ने तीसरा क्वार्टर समाप्त होने तक 3-1 की बढ़त बनाई। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।

0: तो कार्यक्रम को सबसे पहले शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम से यानी फीफा विश्व कप की खबरों से, जहां आज ग्रुप स्टेज में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें टीमें नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पे उतरेंगी। ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप एल में रात 1:30 बजे अमेरिका के बोस्टन में इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। कनाडा के टोरंटो में सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से, जबकि ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया और कांगो आमने सामने होंगे। इस बीच अर्जेंटीना, फ्रांस और नॉर्वे ने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: Could drop anywhere and it's turned in from close range. It's a second goal for Algeria and it's been scored by Amin Gouiri. Algeria coming from behind in the second half. Jordan 1, Algeria 2.
2: अल्जीरिया ने आज सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में ग्रुप जे के मैच में जॉर्डन को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच में पहला गोल जॉर्डन के निजार अल राशदान ने मैच के 36वें मिनट में किया। इसके बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और 2 गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है।
1: Senegal bite back in stoppage time. The final whistle. And the Viking adventure will go on. Norway into the knockouts.
2: इससे पहले 28 साल बाद फीफा विश्व कप खेल रही नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। नॉर्वे के लिए एर्लिंग हॉलैंड एक बार फिर से मैच के हीरो बनकर उभरे। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 43वें मिनट में नॉर्वे के मार्कस होल्मग्रेन पेटरसन ने किया। इसके बाद दूसरे हाफ में 48वें मिनट में एर्लिंग हॉलैंड ने गोल कर नॉर्वे को 2-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद सेनेगल की तरफ से इस्माइला सार ने 53वें मिनट में गोल किया। एर्लिंग हॉलैंड ने 58वें मिनट में गोल कर नॉर्वे को 3-1 से आगे कर दिया। इस्माइला सार ने सेनेगल के लिए दूसरा गोल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरे किलियन एम्बाप्पे के 2 शानदार गोल की मदद से फ्रांस ने इराक को 3-0 से पराजित किया। इस जीत ने फ्रांस को राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। इसके साथ ही एम्बाप्पे 4 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे खड़े हैं। फ्रांस के लिए पहला और दूसरा गोल एम्बाप्पे ने किया। इसके बाद माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया।
1: Because he works miracles, and he is Lionel Messi. And Argentina leave Austria behind by 2-0. They are through.
2: दिन का पहला मुकाबला स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम रहा, जो न सिर्फ ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के नायक बने बल्कि फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। मेसी के 2 गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली है। मेसी ने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी

0: टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत पक्की कर दी।
1: मेसी! History in Dallas, 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
0: इस गोल के साथ ही मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये फीफा विश्व कप में इस महान खिलाड़ी का 17वां और इस वर्ष का 4th गोल था। अपने 39वें जन्मदिन से 2 दिन पहले मेसी ने न केवल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि वे फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जॉर्जिन्हो के बाद लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और फुटबॉल के इस महासंग्राम के बाद अब निशानेबाजी की बात की जाए, जहां जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत पदक, जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी स्पर्धा की टीम इवेंट में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। कार्यक्रम में अब बात हॉकी के मैदान से हॉकी की खबरों की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने मुकाबले में 3-1 की बढ़त बना रखी है। भारत के लिए अभिषेक ने मैच के 21वें मिनट में, नीलकांता शर्मा ने 23वें मिनट में और सुखजीत सिंह ने 39वें मिनट में 1-1 गोल किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नदीम अहमद ने पाकिस्तान का एकमात्र गोल दागा। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर हमारी रिपोर्ट।
3: मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आज से बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जलाहली में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान को 2-0 से हरा दिया। 3 जुलाई तक चलने वाली इस हॉकी प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग सह नॉकआउट आधार पर ये मुकाबले एयरफोर्स स्टेशन जलाहली स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 2018 से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस दौरान टूर्नामेंट की विजेता टीम को 10 लाख रुपए और उप विजेता को 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रत्येक मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच को 25,000 रुपए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का नाम वायुसेना के महान मार्शल अर्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। हॉकी खेल के प्रति मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का जुनून बेमिसाल था। भारतीय वायुसेना के इस पूर्व अधिकारी ने हमेशा ही वायु योद्धाओं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रेरित किया जिन्होंने आगे रहकर नेतृत्व किया, चाहे वे युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान। इस प्रतियोगिता का 6th संस्करण पिछले वर्ष चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिनमें 2 अन्य देशों की वायुसेना की हॉकी टीमें सहित कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो एक शानदार प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और एक प्रतियोगिता का आगाज आज होने को है। US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया के फुलटन में शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व करेंगे।
4: पुरुष सिंगल्स में विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पे काबिज लक्ष्य सेन को दूसरी वरीयता दी गई है और पहले दौर में उनका मुकाबला बेल्जियम के जूलियन कैरागी से होगा। इस महीने की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन में पहले दौर में बाहर होने के बाद लक्ष्य वापसी करने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में अपना पहला मैच चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू के खिलाफ खेलेंगे। सानिध दयानंद जापान की 4थी वरीयता प्राप्त युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमणियन ने भी मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है और उनका मुकाबला क्वालिफायर से होगा। महिला वर्ग में कुल 7 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा और 6ठी वरीयता प्राप्त देविका सिहाग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि देविका का सामना पेरू की इनेस लुसिया कैस्टिलो सालाजार से होगा। विश्व रैंकिंग में 91 स्थान पर काबिज, अनमोल खरब पहले दौर में बुल्गारिया की कालोयाना नलम

0: तोबा से भिड़ेंगी। रक्षिता श्री एस का सामना पहले दौर में क्वालिफायर से होगा। अगर वह आगे बढ़ती है तो अगले दौर में उन्हें कनाडा की शीर्ष वरीयता प्राप्त मिशेल ली का सामना करना पड़ सकता है। श्रियांशी वल्ली शेट्टी अपना पहला मैच कनाडा की राहेल चान के खिलाफ खेलेंगी। तान्या हेमंत का सामना जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी से, जबकि आकर्षी कश्यप का मुकाबला चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग से होगा। महिला डबल्स में भारत की ओर से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ही चुनौती पेश करेंगी। उनका पहला मुकाबला स्पेन की पाउला लोफेज और लुसिया रोड्रिगेज से होगा। पुरुष डबल्स के ड्रॉ में कोई भी भारतीय जोड़ी शामिल नहीं है। मिक्स डबल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के विरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैप।
1: और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस, श्री सविता पूनिया खेल हॉकी, रोहित गुरुनाथ शर्मा खेल क्रिकेट।
1: पद्मश्री से सम्मानित होने पर सविता पूनिया ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
3: खुशी तो बहुत है क्योंकि एक हॉकी में लंबी जर्नी रही है मेरी और काफी हार्डवर्क किया है और टीम की बहुत हमेशा सपोर्ट रही है, फैमिली की सपोर्ट रही है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। हमेशा वो जर्नी याद आती है कि आपने खेलना क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। तो एक वो टाइम था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, हॉकी खेलना तो बहुत दूर की बात थी, और आज मुझे राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के साथ जाना है तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
1: वहीं पद्म भूषण से सम्मानित होने पर विजय अमृतराज ने इस सम्मान के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।
4: I think I'm truly honored, I'm thrilled, I'm delighted, humbled by this incredible award by the government of India, the People's Award. The Padma Awards are very, very special. The Padma Bhushan is truly special for me at this stage in my career, and I'm honored. I thank the government of India, I thank the Honorable Prime Minister, and of course, the people of this great country who have helped me perform to the best of my ability, not just in India, but around the world, and it has been a real honor to be able to represent India around the world.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत केरलम के तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है।
5: Cycling is a best exercise, is a solution of pollution, is a save the fuel, is also solution of traffic. एक cycling में इतना फायदा होता है तो why we are not doing cycling? सभी केरला वासी को आग्रह है कि आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो आप cycling करिए, cycle लेके आपके वर्क प्लेस पर जाइए। सभी कॉलेज और स्कूल के यूथ को मेरा आग्रह है कि अब स्कूल कॉलेज साइकिल लेके जाइए और साइकिलिंग को प्रमोट करके हेल्दी नेशन और वेल्दी नेशन के स्लोगन को साकार करिए।
1: किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी का बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव पहली बार भारतीय टीम की जर्सी प्राप्त करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान वैभव ने कहा कि इस पल को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
6: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ, और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ड्रीम जैसा ही लग रहा था, और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया।
1: और श्रोताओं, आज 23 जून है। आज ही के दिन 2013 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बर्मिंघम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
7: India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have. He's got it now. And India now winners of the ICC Champions Trophy 2013.
1: तो इन्हीं स्मृतियों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर

0: आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय आप हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं

0: सिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के

0: माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रियंका जी।
1: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
2: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस रहा। डीजीएसएनडी एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
1: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
2: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
1: जी,
2: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
1: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
2: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका जीएसटीएन है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
1: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जैम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसायी, हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
2: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ तो मेरी टेंडर लगी, तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव हैं।
1: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
2: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है, तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है।
1: जी।
2: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण, उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही है। जो स्टार्टअप है जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
2: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी, उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
2: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
2: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही। ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस जो

0: लेंस होती है, जो भाषा होती है एआई प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, पीजीए टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AIML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीददार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको बढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है, और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, हूँ डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को

0: विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 1993 के कोलकाता बाजार बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहाई का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश पीके मिश्रा और न्यायाधीश संजीव सचदेवा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम राहत दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के अंतर्गत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजेंद्र सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया, जबकि पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महमूद ने गोल किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप के में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के साथ थोड़ी देर में शुरू। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हार्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला 1 एलपीजी कैरियर, 1 कच्चे तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है। कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं, उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय अधिकार आधार पर फिलिस्तीन को सहायता प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत यूएई रक्षा साझेदारी पर प्रवक्ता ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों पर कहा कि ऐसे बयान पड़ोसी देश की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति का नतीजा है। पाकिस्तान अपने अवैध और जबरदस्ती कब्जे वाले इलाकों में लोगों का आर्थिक शोषण करता है, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखता है और उनका दमन करता है। श्री जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके गलत कामों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सकारात्मक संबंध आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से अपने परिचालन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोगी संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेटिक एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को अपनी तकनीक के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमरीकी हार्मोज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियंत्रण के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। भारतीय नौसेना की आधुनिक स्टिल्थ युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नेहर रोंग बंदरगाह पहुंचे। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। भारत के लिए राजेंद्र सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक और नीलकांता शर्मा ने एक एक गोल किया। पाकिस्तान के लिए अहमद नदीम, मोइन शकील और अबू महमूद ने गोल किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल कर सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे नाकामियों को छुपाने का निराशाजनक प्रयास बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन के बाद से भारत जाने वाले 11 जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से पर्यावरण प्रभावी रिपोर्ट जारी करने और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता जताने का आह्वान किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. India rejects remarks by Islamabad over situation in Pakistan-occupied Kashmir, calls it desperate attempts to cover up its own failings. External Affairs Ministry says 11 India-bound vessels crossed Strait of Hormuz since MOU between US and Iran. UN Chief Antonio Guterres calls on artificial intelligence companies to release environmental impact report and commit to clean energy. Indian men's hockey team beat Pakistan 4-3 in opening match of London leg of FIH Pro League. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Uzbekistan in a group stage fixture at Houston in a short while.

यू की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 11 सेकंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म की कहानी की। 1962 की एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सस्पेंस फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म का निर्देशन किया था राज खोसला साहब ने, जबकि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जॉय मुखर्जी और साधना शिवदासानी। फिल्म के निर्माता थे सशाधर मुखर्जी और इसका मधुर संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। इस फिल्म की कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। कहानी शुरू होती है लेफ्टिनेंट अजय मेहरा से, जो आजादी के बाद कश्मीर में एक गुप्त मिशन पर होते हैं। मिशन के दौरान एक बम धमाके में वे घायल हो जाते हैं और अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है आशा से, जो आतंकवादियों के हमले के कारण अपने घर से भागने पर मजबूर हो जाती है। आशा अजय की देखभाल करती है, उन्हें स्वस्थ बनाती है, उनको सेहतयाब करती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अजय अपनी पहचान तलाशने के लिए बंबई पहुंचते हैं। आज की मुंबई, पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। वहां एक दुर्घटना के बाद उनकी कुछ पुरानी यादें लौट आती है, लेकिन पिछले 6 महीनों की सारी बातें वे भूल चुके होते हैं। इसी दौरान बैंक लुटेरों का एक गिरोह उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि अजय उन्हें पहचान चुके होते हैं। इसके बाद शुरू होता है रहस्य, धोखे और रोमांच का सिलसिला। कई बार अजय की जान लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरकार पुलिस और अजय की चतुर योजना से अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। अंत में अजय की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है और उनका मिलन आशा से हो जाता है। 1962 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसकी सफलता ने अभिनेत्री साधना शिवदासानी को रहस्य रोमांच वाली फिल्मों की लोकप्रिय नायिका बना दिया। बाद में निर्देशक राज खोसला ने उन्हें अपनी दूसरी चर्चित फिल्मों में काम दिया और वो फिल्में थी वो कौन थी, मेरा साया और अनीता। तो आइए इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का, और यह फिल्म आई थी 1962 में। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की।

0: समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं। स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में, और हर सिंगार में बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर, और साथ ही साथ कुछ फिल्मों की बातें भी होंगी। और अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक है, और वो फिल्म है 1967 में रिलीज हुई शागिर्द, जिसमें है हंसी, प्यार, गलतफहमियां और भरपूर मनोरंजन। जी हां, ये शागिर्द फिल्म बेहद खूबसूरत और बहुत ही रोमांचक फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था समीर गांगुली ने, और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे उस दौर के लोकप्रिय जोड़ी जॉय मुखर्जी और सायरा बानो। कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक खुशमिजाज और होनहार नौजवान है। उसके गुरु हैं प्रोफेसर ब्रिजमोहन अग्निहोत्री, जिन्होंने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार कब, कहां, कैसे और किससे हो जाए, ये कोई नहीं जानता। एक दिन प्रोफेसर साहब की मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत पूनम से, और देखते ही देखते वे उस पर अपना दिल हार बैठते हैं। अब मजेदार बात यह है कि पूनम का दिल तो उनके छात्र रमेश पर आ चुका होता है। बस यहीं से शुरू होती है हंसी मजाक वाली बात। गुरु और शिष्य की भूमिकाएं जैसे बदल जाती हैं। प्रोफेसर साहब अपने ही छात्र रमेश से प्यार के गुर सीखने लगते हैं, लेकिन पूनम उन्हें केवल एक सम्मानित अंकल की तरह देखती हैं। उधर रमेश और पूनम का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों शादी का सपना देखने लगते हैं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शेफाली नाम की लड़की और चालाक मदन शिकागो वाला की वजह से रमेश एक बड़ी साजिश में फंस जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी हल्की पुल्की कॉमेडी और शानदार संगीत था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की मशहूर जोड़ी ने, और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म में सायरा बानो के शानदार अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। शागिर्द सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि हंसी, भावनाओं और यादगार गीतों से सजी एक ऐसी फिल्म है जो आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुई है। तो जब भी आपको मौका मिले ना, ये फिल्म जरूर देखें। तो आइए फिल्म शागिर्द का ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, जो उस वक्त हर सिनेमा प्रेमियों के जबान पर हमेशा रहता था और लोग गुनगुनाया करते थे, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

दिल विल प्यार वार, शागिर फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और इस बेहद खूबसूरत महफिल में, यानी हर सिंगार की बेहद खूबसूरत महफिल में, सदाबहार गीतों की महफिल में हम हाजिर हैं आपके दिल की बातों को लेकर बेहद खूबसूरत नगमों के साथ। इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक और ऐसी ही कालजयी फिल्म की, जिसके गीत, संवाद और अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा हैं। यह फिल्म है आंधी, और यह फिल्म आई थी 1975 में। फिल्म का निर्देशन किया था शब्दों के जादूगर गुलजार साहब ने, और मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अभिनय के धनी संजीव कुमार साहब, और उनके साथ थी बंगाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन। आंधी की कहानी राजनीति और प्रेम के बीच झूलते एक रिश्ते की कहानी है। आरती देवी एक सफल और लोकप्रिय राजनेता हैं। चुनाव प्रचार के दौरान

एक होटल में ठहरना पड़ता है। संयोग से वो होटल उनके पति जेके का होता है, जिनसे वे वर्षों पहले अलग हो चुकी होती हैं। सालों बाद हुई ये मुलाकात दोनों को उन पुराने दिनों में ले जाती है, जब सपने, प्यार और साथ जीने की तमन्नाएं थी, लेकिन वक्त और ख्वाहिशात ने उनके रास्ते अलग अलग कर दिए थे। फिल्म बहुत ही खूबसूरती से यह सवाल उठाती है कि क्या सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी रिश्तों की गर्माहट बरकरार रह सकती है। आरती देवी की भूमिका सबसे पहले प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला जी को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये भूमिका स्वीकार नहीं की। हालांकि बाद में उन्होंने माना कि आंधी उन चुनिंदा फिल्मों में से एक थी जिन्हें न करने का उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। और जब उन्होंने ये किरदार अदा करने से मना कर दिया, तब उसके बाद गुलजार साहब को याद आई बंगाली सिनेमा की सुपरस्टार सुचित्रा सेन। दिलचस्प बात यह है कि कई साल पहले दोनों एक फिल्म पर साथ काम करने वाले थे, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण वो परियोजना शुरू ही नहीं हो पाई थी। आंधी के लिए जब गुलजार कोलकाता पहुंचे तो सुचित्रा सेन ने बिना किसी शर्त के फिल्म के लिए हां कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने वादा किया कि इस बार पटकथा में कोई बदलाव सुझाने वाली वो नहीं है, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पूरी शूटिंग के दौरान निभाया भी। उधर संजीव कुमार पहले ही फिल्म के लिए चुने जा चुके थे, इससे पहले वे गुलजार साहब की कोशिश में भी शानदार अभिनय कर चुके थे। आगे चलकर दोनों ने मौसम, अंगूर और नमकीन जैसी यादगार फिल्मों में साथ में काम किया। खास बात यह है कि इस फिल्म का जो गीत है वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, और इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत प्यारे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, इसकी धुन मूल रूप से एक बंगाली गीत के लिए बनाई गई थी। गुलजार साहब को वो धुन इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी पर हिंदी सिनेमा के लिए एक बेहद खूबसूरत गीत लिख दिया, और फिर जन्म हुआ एक अमर गीत का, और वही गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आंधी फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 11:10 पर लेकर अगला प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो चुनिंदा नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 40 से लेकर 60 के दशक के हैं। आमतौर पर गोल्डन एरा या सुनहरा दौर जिसको हम कहते हैं हिंदी सिनेमा का 1940 से 1960 के दौर का माना जाता है।

उस बीच बेहद खूबसूरत फिल्में बनी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए फिल्में बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए थे और फिर नगमे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है आर पार। ये फिल्म आई थी 1954 में। गुरुदत्त साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे खुद गुरुदत्त साहब और श्यामा और साथ ही कलाकारों में शकीला, जॉनी वॉकर, जगदीप, जगदीश सेट्टी साथ में थे, वीके मूर्ति, कुमकुम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इसको ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

शमशाद बेगम जी की आवाज में ये नगमा था फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और गोल्डन एरा का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से। ये फिल्म आई थी 1954 में और इसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार

आने वालों में रतन कुमार, नाज, डेविड, चांद बुरके और राज कपूर वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो इसके गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये वो नगमा है जो आपकी जिंदगी की नुमाइंदगी करता है।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें से प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं।

फिल्म बूट पॉलिश का यह नगमा था जिसमें आवाजें थी मन्ना डे साहब और आशा जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के इस बेहतरीन नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और गोल्डन एरा का दौर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दौर था जब सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना करती थी। ये वो जमाना था जब भारतीय फिल्म में केवल मनोरंजन का जरिया नहीं थी बल्कि समाज, इंसानियत, मोहब्बत, गरीबी, इंसाफ, ख्वाब और जज्बात की गहरी तर्जुमान हुआ करती थी। और यह नगमा भी अभी आपने जो सुना वो भी कुछ ऐसा ही नगमा था। इस दौर की फिल्मों में अदब यानी साहित्य, शायरी, संगीत, बेहतरीन अदाकारी और मजबूत कहानी का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और ये गोल्डन एरा में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जो अपने आप में बहुत ही मशहूर रही, और वो फिल्म है श्री 420। इसी फिल्म का एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये फिल्म आई थी 1955 में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था खुद राज कपूर साहब ने और साथ ही साथ राज कपूर साहब ने इसमें अभिनय भी किया था। उनके साथ थे नरगिस और नादिरा और भी बहुत सारे कलाकार थे। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: एल्बम
1: हम
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्त के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32:45 और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं और कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमे हैं जो हम आपके लिए खास तौर से चुन के लाए हैं। तो इस महफिल में इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और यह फिल्म आई थी 1955 में और यह फिल्म है जिसका नाम है आजाद, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आए थे दिलीप कुमार साहब और मीना कुमारी जी। साथ ही कलाकारों में ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शमी और एस नजीर के साथ साथ मुराद वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने। हालांकि इस फिल्म के संगीत के लिए पहले नौशाद साहब को अप्रोच किया गया था लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में सी रामचंद्र साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया और वो संगीत अमर हो गया। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और उषा मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपके लिए है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है और उन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। 1956 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म CID से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस फिल्म का निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इसके निर्देशक थे राज खोसला। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद और शकीला थी और साथ में वहीदा रहमान और साथी कलाकारों में KN सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन और जगदीश राज वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे उन्होंने ही लिखे हैं लेकिन एक गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया जिसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

सीआरडी फिल्म का यह नगमा था। आवाजें थी शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, जिसमें हम गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत में अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ। और ये फिल्म आई थी 1957 में। वी शांताराम साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था खुद वी शांताराम और संध्या ने, और साथी कलाकारों में बाबूराव पेंडुलकर, साथ ही साथ उल्हास और बीएम व्यास वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। खास बात यह है कि इस फिल्म को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था 1957 में बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी के लिए वी शांताराम को यह अवार्ड मिला था, और साथ ही साथ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर अवार्ड से उनको नवाजा गया था, और साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी उनको 1959 में नवाजा गया था। वही इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनाते हैं लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसको संगीत से संवारा है वसंत देसाई साहब ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो ये फिल्म है 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब के निर्माण और राधु कमलकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था खुद राज कपूर साहब ने, पद्मनी, प्राण और उनके साथ थे चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर और सुलोचना चटर्जी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और साथ ही साथ शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं, लता जी, गीता दत्त और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, साथ में है मन्ना डे साहब।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को आप दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने

0: के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले दो से तीन दिन तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa in New Delhi last evening. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. The Qatar Amir expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. The Ministry of External Affairs has confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Radheel Jaiswal said, a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
3: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
2: Meanwhile, Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. President Draupadi Murmu presented the Padma

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेला, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। मैंने तुम्हारे सामने कभी जोर से दरवाजा नहीं पटका, बस धीरे धीरे कम बोलने लगी। तुमने इसे मेरी आदत समझ लिया। तुम नहीं जानते कि स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं। स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं कि कितना दिया कितना बचा, कितना दिया कितना बचा। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं।

बस भरोसा, दीवारें नहीं बस भरोसा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना मेरे दिनों की थकी हुई डालियों पर, जहां प्रतीक्षा ने अब तक केवल धूप गिनी है और छांव को याद किया है। तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, ये समय के माथे पर धैर्य का टीका है जो बताता है कि प्रेम हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी वो मौसमों से धीमा चलता है। बसंत मालती, मैंने तुम्हें हर वर्ष नहीं पुकारा, क्योंकि जानती थी हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर जड़ों में पकते हैं, मिट्टी से सलाह लेते हैं और फिर फूल बनते हैं। बसंत मालती, तुम्हें पता है प्रतीक्षा कैसी लिखी जाती है? न घड़ियों से, न कैलेंडर से, बल्कि उन सांसों से जो अधूरी रह जाती है और फिर भी टूटती नहीं। जब तुम खिलती हो तो कोई घोषणा नहीं करती, बस हवा का मिजाज बदल जाता है। पत्तियां समझ जाती हैं कि अब प्रेम को अपने प्रमाण देने होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर बहुत सी अधूरी पंक्तियां संजो रखी हैं, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, जो संयम से पली और भरोसे से बड़ी हुई। तुम फिर खिलना बसंत मालती, तुम फिर खिलना, ताकि यह यकीन रहे कि एक बार फिर से जीवित रहे कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, वो प्रेम की सबसे गहरी तैयारी होती है। बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना। अगला गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म का नाम है जुर्म।

है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर गीत सुहाने लेकर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण

0: जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

धूप के कंधों पर दिन उतरता है, धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी के याद की खुशबू तैरती है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी अधूरे वाक्य की आहट सुनाई देती है। गली के मोड़ पर ठहर गई है हवा, जैसे किसी अनकहे नाम को पुकारना भूल गई हो। फूलों की महक अब केवल महक नहीं, वो किसी बिछड़न का मौन संवाद है।

पेड़ों के साये लंबे हुए हैं, समय के पन्नों पर फैले हुए शब्दों की तरह। शाम के माथे पर सिंदूरी आँच है, पर भीतर कोई धूप अब भी ठहरी हुई है। और मैं सोचती हूँ, क्या हर बहकी हुई हवा में कभी तुम्हारा नाम भी घुला था, या वह बस ऋतु का छलावा था जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है, जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आजाद, आवाज है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। अब जब ऋतुएं बदल चुकी हैं और कई रास्ते अपरिचित हो गए हैं, तब भी वो दिन मेरे भीतर वैसा ही रखा है जैसे किसी पुराने आंगन में बिना देखभाल के भी तुलसी का एक पौधा अपनी हरियाली बचाए रखता है। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी आपको जिस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है हम दोनों। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की

करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की देहरी कोई आंगन नहीं, मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है, जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। मैं इस चौखट पर वर्षों से बैठी हूं, अपने ही शून्य के भीतर तुम्हारे नाम का दीपक गढ़ते हुए। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है, जो भीतर के अंधकार को सत्य की ध्वनि में बदल देता है। प्रिय, तुम आओ न देह बनकर, न किसी शब्द की तरह, बल्कि उस अलौकिक आलोक की तरह जिसमें प्रतीक्षा खुद दीप बन जाए। जब तुम आओगे तो मैं ये देहरी पार नहीं करूंगी, बल्कि ये देहरी स्वयं भीतर खुल जाएगी और मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है, जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, अब किसी राह से बे

वजह मेहमान न भेज। मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मेरे हिस्से कोई फिर से नई पहचान न भेज। जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, उसके लिए मेरे दिल का कोई अरमान न भेज। मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है इंतकाम, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की। तो फिर मिलने के वादे के साथ आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग

के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हुए हैं। दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना विसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि यादों की खुशबू बनकर दिल में बस जाते हैं। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी एक इबादत बन जाता है। ऐसी ही गहरी भावनाओं को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र ने फिल्म एतबार के इस गीत में। तो आइए सुनते हैं फिल्म एतबार का ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतजार बरसों तक दिल करता रहता है, और जब अपनों से या किसी खास शख्स से लंबे अरसे तक मुलाकात नहीं होती है, और जब मुलाकात होती है तो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पूरा पिरोया है फिल्म राम लखन के इस मधुर गीत ने, जिसे आवाज दी है मनहर और अनुराधा पौड़वाल ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की चाहत हर धड़कन को रहती है। प्यार जब अपने एहसास का इजहार चाहता है तो शब्दों में एक मीठी सी बेचैनी और अपनापन झलकने लगता है। फिल्म तेजाब का ये गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

3:35 और 38 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। वक्त की रफ्तार चाहे दिनों, महीनों और सालों को गुजार दे, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कभी कम नहीं होता। दूरियां बढ़ सकती हैं, मगर दिलों के बीच की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिल्म अवतार का ये मधुर गीत इसी अटूट साथ और इंतजार से खूबसूरत एहसास को समर्पित करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी की असली दौलत ना तो सोना है ना चांदी और ना ही कोई अनमोल रत्न। अगर दिल में प्यार और साथ का भरोसा हो तो हर ख्वाहिश पूरी लगने लगती है। ये है फिल्म हीरा पन्ना का गीत, जिसे आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज।

दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि यादों और अफसानों में भी जिंदा रहती हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसकी गूंज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म पिघलता आसमां का ये मधुर गीत प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार जब दिल की गहराइयों से निकलकर दुआ बन जाए तो हर दूरी मिटाने की चाह और भी बढ़ जाती है। मिलन की उम्मीद साथ निभाने का वादा और एक दूसरे में खो जाने का एहसास, यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है। फिल्म प्रेम गीत का ये मधुर नगमा इन्हीं जज्बातों को बड़ी नजाकत से बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाडेकर की आवाजों में ये गीत।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है फिल्म एक दूजे के लिए। और बस यही कहेंगे कि जब दो दिल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया रचने का सपना देखते हैं तब प्यार एक नई कहानी बन जाता है। उम्मीद, विश्वास और सुनहरे भविष्य की यही भावना समेटे हुए है ये मधुर गीत। आवाजें SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है।

सुबह के 4:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और एक बार फिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। हर दिन हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत होती है मन की शक्ति की, धैर्य की और अच्छे विचारों की। इसी भावना को बेहद सुंदर शब्दों और मधुर स्वर में पिरोया गया है फिल्म गुड्डी के इस प्रेरणादायक गीत ने। आइए सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में ये गीत।

जीवन की राहों में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने सपनों का दामन थामे रखने की। इन्हीं भावनाओं को बड़े सलीके से सजाता है फिल्म हाउस नंबर 44 का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनमें अपनापन भी होता है, भरोसा भी और प्यार की वो सादगी भी जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। फिल्म दोस्ती का ये मधुर गीत इसी अनमोल एहसास को सुरों में पिरोता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 4:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। जिंदगी में इंसान का साथ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके अच्छे विचार, उसके संस्कार और उसकी दी हुई प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। समय बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन प्यार, अच्छाई और यादों की खुशबू कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में ऐसे निशान छोड़िए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मुस्कान बनकर महकते रहें। कुछ इस तरह जैसे ये गीत है फिल्म ममता का, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी और आसान रहा नहीं होती। कभी मंजिल बदलती है, कभी रास्ते। लेकिन जो इंसान हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, उसके लिए हर मोड़ एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, नए रास्तों को पहचानने की जरूरत होती है। क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं, बल्कि आगे चलते रहने का नाम है।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में जब भी उम्मीद की खुशबू बिखरती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे रजनीगंधा के फूल अपनी महक से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। मुस्कुराते रहिए, सपनों को संजोए रखिए, क्योंकि खुशियों की सुगंध वही महसूस करता है जो उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ता।

0: दोस्तों, फूलों की तरह जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी खुशबू और मुस्कान कभी कम नहीं होनी देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, मौसम बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही हर दिन को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत में बदल देता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास भी खुशियों की महक बिखेरते रहें।
1: ठीक है, ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
3: सुनो सुनो,
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

दोस्तों, बहती हुई नदी हमें एक अनमोल संदेश देती है, ये तो सभी जानते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, जीवन की राह में आंधी आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय की धारा बहुत तेज है, जो ठहर गया वो पीछे छूट गया, इसलिए हर नई सुबह के साथ अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए।

जिंदगी की असली खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं और बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास दुआएं हैं, और सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमके।

200 कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूंगी कि ये जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन हर इंसान इस दुनिया से विदा ले जाएगा, पर उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें अमर हो जाती हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए, हर दिन को पूरे मन से जिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके नेक कर्मों से बने। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म करम और मुझे अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आए दिन बाहर के से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

0: रफ्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है किनारा।